शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए, लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं, ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा, मैं हूं गगन आपके साथ।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
5: हाय मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: का उधार श्याम, तुझे चुकाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे देखता हूं और किश्तें अदा हो जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम। भगवद गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जाने और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Film making एक creative field है और यदि आप creative सोचते हैं तो ये field आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें Sharda University के Sharda School of Media, Film and Entertainment Department में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसीलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं अच्छी अच्छी बातें आपके साथ साझा करने के लिए। सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते यहां से ज्ञान विज्ञान की बातें होती हैं, पढ़ने पढ़ाने की बातें होती हैं, जिंदगी को जीने की बातें होती हैं। जब पढ़ने पढ़ाने की बात मैंने यहां जिक्र कर दी है तो आज कुछ ऐसी ही बातें होंगी कि अगर आप अपने आप को लेकर आगे जाना चाहते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की बात हो, विदेश की बात हो, तो किस किस दुश्वारियों का आपको सामना करना पड़ता है, इन दुश्वारियों से या यूं कहें कि इन चैलेंजेस से कैसे हम अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। जाहिर सी बात है, इन सारी बातों को जानने के लिए, समझने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, एक काउंसलर की जरूरत होती है। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में है जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हर एक सवाल का जवाब आपको बखूबी मिलेगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीजा इन्फो के आप संस्थापक हैं, सीईओ हैं, मिस्टर अमित बैजल जी, जो कि 2007 में इन्होंने इसकी स्थापना की और ये एक बुटीक माइग्रेशन लॉ एंड हायर एजुकेशन कंसल्टेंसी है और जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस है, साथ ही साथ भारतीय उपमहाद्वीप, केन्या में, और मतलब इस तरीके से धीरे धीरे आप पैर पसार रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। एजुकेशन के बारे में सर की अगर बात मैं आपके सामने रखूं तो सर ने जो एजुकेशन रही है वो डीपीएस आर के पुरम नई दिल्ली से रही है और आप आईएचएम में ग्रेजुएट है, यानी कि पूसा इंस्टीट्यूट जिसका नाम आता है, और आईएचएम का जब जिक्र आता है तो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई का जिक्र आता है। साथ ही साथ आपने सर्टिफिकेट प्रोग्राम माइग्रेशन लॉ एंड प्रैक्टिस फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से, कैनबरा एंड एमबीए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी से आपने वहां से पढ़ाई की है, तो बहुत सारा अनुभव है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सर से ही खुद इसके बारे में जानना चाहूंगा। तो सर बहुत बहुत आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: मैं तो थक जाऊंगा सर, बहुत अच्छा आपका अच्छा एक्सपीरियंस है और अच्छी बातें आपके बारे में पढ़ रहा था, तो बस मैं तो यही कहूंगा कि मुझे खुशी हो रही है आपसे बात करके और बहुत सारी बातें हम जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
1: जरूर।
0: जहन में पहले सवाल ये आता है कि आप कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया, दिल्ली इज वेरी नाइस, ये हमारी होम सिटी है। 25 साल हुए दिल्ली छोड़े हुए लेकिन अभी भी घर ही लगता है।
0: घर ही लगता है, बहुत सही कहा आपने, घर ही लगता है, रियली नाइस। सबसे पहले जहन में सवाल ये भी आता है कि ये जो कंपनी है आपकी जिसके आप संस्थापक हैं, वीजा इन्फो
1: जी,
0: मैं जानना चाहता हूँ, मेरे लिसनर्स जानना चाहते हैं कि वीजा इन्फो है क्या?
1: देखिए, जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया था तो मैं भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह गया था। मैं 1999 की बात बता रहा हूँ आपको। तो जब मैं वहाँ पहली बार गया तो मुझे ये एहसास हुआ कि एक तो मुझे आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था ऑस्ट्रेलिया के लिए क्योंकि मुझे पता नहीं था ऑस्ट्रेलिया है क्या। इनफैक्ट मुझे ये नहीं पता था कि एजुकेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है, हर कंट्री में अलग अलग तरीके से पढ़ाई जाती है, अलग अलग तरीके से पढ़ी जाती है
0: जी।
1: तो क्योंकि मेरे पास सिर्फ हिंदुस्तान का अनुभव था

0: मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज और रिसर्च की बहुत बड़ी कमी है स्टूडेंट्स के अंदर. जब वो बाहर जाते हैं तो वो यूजुअली लोगों से ओपिनियन लेते हैं, एजेंट्स के पास जाते हैं, एजुकेशन एजेंट्स के पास पहुंच जाते हैं और अपना पूरा फ्यूचर का करियर उनके हाथ में रख के बोलते हैं आपको जो करना है कीजिए.
1: जी.
0: तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसको कि जब आप सोचते हैं कि हमें बाहर जाना है तो आपको एक डिफरेंट तरीके से एक डिफरेंट अप्रोच लेनी चाहिए बाहर के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, और वो बहुत जरूरी है.
1: जी मैं समझता हूं कि सर उसके बाद आपका रोल शुरू होता है, आपकी भूमिका शुरू होती है. जब आपने कहा कि एक स्टूडेंट्स को कुछ भी ज्ञान नहीं होता, वो अनभिज्ञ होता है, तो जो आपकी भूमिका है, क्योंकि आप एक यूं कहें कि सर्टिफाइड एजेंट हैं, अच्छे काउंसलर हैं, और जब आप लोगों से मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, स्टूडेंट्स के बीच में आप जाते हैं, तो वो क्या चैलेंजेस होते हैं, वो क्या आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपसे समझना चाहते हैं, और उस वक्त आप उनको किस तरीके से गाइड करते हैं? यूँ कहें कि इसके साथ साथ सवाल मेरा ये भी जुड़ा हुआ है कि ये जो जर्नी शुरू होती है आफ्टर ट्वेल्थ के बाद शुरू होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाना चाहता है, स्टूडेंट्स को जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं, तो वो आपका जो भूमिका है, जो रोल है, वो क्या रहता है?
0: देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जर्नी ट्वेल्थ के बाद शुरू होती है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है. मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा. आज अगर आप अपने बच्चे को IIT में एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो यूजुअली आप उसकी तैयारी 6ठी 7वीं से शुरू कर देते हैं. आप 12वीं की वेट नहीं करते हैं कि 12वीं खत्म होगी उसके बाद हमारा बेटा IIT की इंजीनियरिंग की परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए शुरुआत करेगा. तो आपके लिए जो जो चीज़ ज़रूरी है ज़िंदगी में, आप उसकी तैयारी बहुत अरसे पहले से शुरू कर देते हैं, चाहे वो IIT हो, चाहे वो MBBS हो, चाहे वो IIM में एडमिशन हो, चाहे कोई भी किस्म का एंट्रेंस टेस्ट हो. लेकिन जब बाहर जाने की बात आती है तो यूजुअली देखा यह जाता है कि माँ बाप अपने बच्चों को ये कहते हैं कि पहले आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, 12वीं खत्म कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस या वहां जाने का प्रोसेस शुरू करेंगे. तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी दिक्कत तो यहीं पर आती है, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलता रिसर्च करने का, समझने का, सोचने का, और आपको डिसीजन लेना होता है इंस्टेंटली. तो उसमें फिर वो अरेंज मैरिज वाला सीन हो जाता है कि आपको लड़की दिखाई गई है, आपको 15 सेकंड में हाँ या ना बोलना है और उसके बाद उसके साथ पूरी जिंदगी निभाना है.
1: ऐसा अक्सर होता भी है कि मतलब कभी कभी फैसले गलत भी हो जाते हैं. आपकी बात को मैं समझ पा रहा हूँ. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो फैसले हमारे बड़े बुजुर्ग ले लिया करते थे, तो जिंदगी भर जब एक दूसरे के साथ रहते हैं हस्बैंड वाइफ, वो फैसले सही भी होते हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो खैर, आपकी बात का भावार्थ मैं समझ पा रहा हूँ, हमारे लिसनर्स भी इस बात को समझ पा रहे हैं कि सर ने वाकई बहुत अच्छी बात कही है कि ऐसा अक्सर हिंदुस्तान में भी होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है, कहीं कहीं नहीं होता. दोनों बात सर ने यहाँ रखी है कि अगर आप वो एक प्लेटफॉर्म, अगर वो आप एक बेस बना के शुरू से ही चलेंगे तो ट्वेल्थ के बाद आपको दिक्कत परेशानी ज्यादा सामने नहीं आएगी. तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए, और जो अमित सर आपसे अपनी एक जर्नी शेयर कर रहे हैं, इस बात को निश्चित तौर पर जब आप ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हमारे जो गेस्ट हैं हम उनसे ही जानना चाहेंगे. म्यूजिक से आपका वास्ता तो रहता ही होगा सर, कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जो आप सुनना चाहते हो, हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहते हो?
0: मुझे मोहम्मद रफी के सारे गीत बड़े अच्छे लगते हैं, तो मोहम्मद रफी का कोई भी गाना बहुत ही अच्छा होता है. सुबह का टाइम है,
1: ये ब्यूटीफुल ट्रैक आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ अमित सर के लिए. तो ये गाना आपके लिए भी है लिसनर्स, इस गाने को आप जरूर सुनिए, कहीं जाएगा मत. स्टे ट्यून्ड, ऑल न्यूज़ सुनो शारदा 90.8 FM. मैं हूं गगन, और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान है, अमित बैजल साहब, जो कि वीजा इन्फो के संस्थापक हैं, और बहुत सारी बातें हो रही हैं वीजा इन्फो के बारे में, करियर के बारे में. कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM.

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, आप हैं अमित बैजल जी, जो कि वीजा इन्फो के आप संस्थापक हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: ब्रेक पर जाने से पहले आपने सर बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, जो मुझे भी समझ में आई कि 12th के बाद हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये प्लानिंग अगर पहले से होगी तो निश्चित तौर पर ज्यादा दिक्कत परेशानी लोगों के सामने नहीं आएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि लोग आपकी जो ड्यूटी शुरू होती है, आपसे जब मिलते हैं, विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा एजेंट, अच्छा काउंसलर अगर मिल जाए तो उनकी मेहनत वसूल हो जाती है, अदरवाइज इस पेशे से भी विश्वास उठ जाता है। अक्सर हमने देखा है कि कबूतरबाजी, जिसे एक आम भाषा में कहा जाता है कि लोग पैसे ऐठ लेते हैं, वहां हम आपको भेजेंगे, वहां धरातल पर चीजें अलग कुछ होती हैं, तो ये प्रोसेस मैं समझना चाहता हूँ।
1: देखिए, सबसे पहले आपको इसकी तैयारी तरीके से करनी पड़ेगी, और सबसे पहला सवाल आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए, आपका गोल क्या है। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका उद्देश्य क्या है, क्योंकि उद्देश्य और डिजायर कि मुझे क्या ख्वाहिशें हैं, वो दो अलग अलग चीजें होती है। आपकी ख्वाहिश हो सकती है बहुत आपके पास पैसा हो, ये एक ख्वाहिश है, ये गोल नहीं है। गोल आपका होना चाहिए बड़ा क्लियर, संक्षिप्त, कि आप करना क्या चाहते हैं आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद
0: जी।
1: अब लोग कहते हैं कि हम कैसे बताएं कि आज 5 साल के बाद क्या होगा या क्या करना चाहते हैं। भले ही लोगों को ये ना पता हो कि हमें 5 साल के बाद क्या करना है, लेकिन उनको एक चीज हमेशा हर एक आदमी को पता होती है कि हमारे को 4 से 5 साल के बाद जिंदगी जीने के लिए जो लाइफस्टाइल हम चाहते हैं उसके लिए हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये सवाल किसी से पूछे, भले ही वो इससे नजर चुराए, आंसर ना करना चाहे, लेकिन एक ना एक दिन जिंदगी में सबको आंसर करना पड़ता है कि उनको एक्चुअली में जिंदगी जीने के लिए जैसा वो लाइफस्टाइल चाहते हैं उसके लिए कितनी आमदनी की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज तो मैं अपने श्रोताओं से ये कहूंगा कि सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको अपनी जिंदगी जैसा आप जीना चाहते हैं, उस जिंदगी जीने के लिए अगर आपकी ख्वाहिश और रिक्वायरमेंट 2 लाख रुपए महीने की सैलरी की है, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि मेरी 2 लाख रुपए सैलरी का मेरा उद्देश्य है आज से 3 या 4 साल बाद, और आपको ये समझना जरूरी है कि आप उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या करना चाहते हैं,
0: और
1: जो कर रहे हैं क्या वो आपको उस उद्देश्य के पास लेके जा रहा है या उससे दूर लेके जा रहा है। तो ये अगर इस तरीके से आदमी सोचना शुरू करे तो उसको आउटकम्स बहुत अच्छे मिलेंगे, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मिलेंगे। लोग अक्सर ये वाली बात करते हैं कि हमने ऐसा सोचा था बट ऐसा हुआ नहीं,
0: नहीं हुआ।
1: ये 99% लोग अपनी जब नाकामी होती है तो
0: छुपाने की कोशिश करते हैं,
1: छुपाने की भी कोशिश नहीं करते, मैं ये नहीं कहूंगा कि छुपाने की कोशिश करते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनको प्रिपेयर नहीं थे। अब प्रिपेयर नहीं थे तो अब नाकामी का कोई कारण तो होता है
0: जी,
1: तो अब हर आदमी हर इंसान एक कारण ढूंढता है। तो अगर तो आपने ये देख लिया कि आपको कितनी आमदनी चाहिए, तो उसके बाद आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप उस आमदनी को हासिल करने के लिए क्या एजुकेशन का सहारा ले रहे हैं। अगर एजुकेशन का सहारा ले रहे हैं तो एजुकेशन को एक्सपेंस मत समझिए, एजुकेशन इज नॉट एन एक्सपेंस, एजुकेशन इन्वेस्टमेंट है। जब आप अपना घर खरीदते हैं, आपके माँ बाप ने घर खरीदा होगा तो उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, कितनी लोगों से बात करी होगी ये देखने के लिए कि उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, क्या दाम बढ़ेंगे आगे जाके। तो जो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो घर खरीदने की हो, चाहे वो सोने जवाहरात की हो, हर इन्वेस्टमेंट पे इंसान रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखता है। तो एजुकेशन भी एक इन्वेस्टमेंट है
0: जी।
1: और एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगी वो आपकी लाइफस्टाइल को फंड कर सकती है या नहीं, इसका जवाब आपको देना है सबसे पहले, और उसके हिसाब से आपको अपना गोल सेट करना है। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि आपने गोल सेट कर लिया कि हमारे को ये आमदनी चाहिए, अब क्या ये पॉसिबल है कि आपके गोल के मुताबिक ये आमदनी आपको हिंदुस्तान में हासिल हो सकती है। हो सकता है आपको ये आमदनी हिंदुस्तान में नहीं बाहर हासिल हो सकती है, तो फिर आपको ये भी देखना है कि बाहर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कितने सालों के लिए जाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है आप बाहर जाएं तो हमेशा के लिए चले जाएं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप 2 साल के लिए 4 साल के लिए या परमानेंटली भी बाहर जाके सेटल हो सकते हैं। तो अब आपको ये जवाब देना है कि आपका गोल क्या है, आपने बाहर थोड़े टाइम के लिए जाना है या परमानेंटली जाना
0: बसने है? जाना
1: है बसने जाना है
0: जी।
1: तो अगर तो आपने बसने जाना है तो फिर हम उस तरीके से आपके सवालों के जवाब, और आपको आपसे ही हम बात करके आपसे समझेंगे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। जब हमारे को गोल और उद्देश्य क्लियर है उसके बाद हमारे को किसी चीज की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमारे को हर चीज का नापतोल करने का एक चीज मिल जाती है कि अगर ये चीज आपको डिसीजन उद्देश्य के पास लेके जा रहा है तो ठीक है, दूर लेके जा रहा है तो उसके बारे में सोचो नहीं।
0: जी जी,
1: तो सब कुछ आसान हो जाता है उद्देश्य साफ हो तो।
0: क्या बात है, बहुत खूब। इस बात का मर्म यही है कि उद्देश्य साफ होना बहुत जरूरी है, पिक्चर क्लियर होना बहुत जरूरी है, उसके बाद जो प्लानिंग आप करते हैं तो निश्चित तौर पर वो प्लानिंग एक इंसान को आगे लेकर जरूर जाएगी। यहाँ पर चैलेंजेस की हम बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। सो लिसनर्स, वो कौन कौन सी चुनौतियां, ये तो रही बात एक नॉलेज की, जानकारी की, कि ये जानकारी अगर आपको है, आपका जो एक उद्देश्य है वो सब कुछ अगर क्लियर है तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद मैं आपको मिलूंगा यहीं, कहीं आप जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान, खास शख्सियत है अमित बैजल जी, जो कि वीजा इन्फो के संस्थापक है। बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, 0104060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ मेरे साथ इस स्टूडियो में एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पढ़ने पढ़ाने की बातें हो रही हैं, जिंदगी को जीने की बातें हो रही हैं, साथ ही साथ म्यूजिक की भी बातें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने स्टार्टिंग में रफी साहब का गाना आपके लिए प्ले किया और अभी ऑफ एयर मेरी बात हो रही थी सर से, तो वो कह रहे थे कि लता जी मेरे दिल के आसपास रहती हैं, उनके गानों को सुनकर सुकून मिलता है। तो यानी कि इस ब्रेक पर लता जी का गाना मैं आपके लिए जरूर प्ले करूंगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वीजा इन्फो के संस्थापक अमित बैजल जी और बहुत अच्छी जानकारियां हम आपसे साझा कर रहे हैं लिसनर्स। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: ब्रेक पर जाने से पहले हमने नॉलेज की बात की, गोल की बात की, तैयारियों की बात की। जानकारी का अभाव कम होता है जिसकी वजह से लोग राह भटक जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने हमारे सामने रखी। लेकिन अब उसके बाद जब हम एक स्टेप को आगे बढ़ रहे होते हैं, कदम आगे बढ़ा रहे होते हैं, तो ये भी सच है कि चुनौतियां फिर वहां से शुरू होती हैं। चाहे वो रुपयों की बात हो, चाहे वो ठगने वाली बात हो, चाहे वो दूसरे विदेश में रहन सहन की बात आती है, अपना सपन नहीं मिलता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2-3 पॉइंट्स मैं आपको गिना पा रहा हूँ
1: जी,
0: आपकी नजर से वो चैलेंजेस क्या हैं?
1: देखिए, आपने बड़ी सही बात कही कि गाइडेंस किस आदमी से या किस शख्सियत से ली जा रही है वो बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण है
0: जी।
1: यहाँ पर देखा जाता है कि बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो आपको कहते हैं कि हम आपको बाहर भेजेंगे, आपको बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे या काम करने के लिए भेजेंगे, और लोग अक्सर उस झांसे में पड़ जाते हैं क्योंकि बहुत कम पैसा मांग रहे होते हैं या थोड़ा बहुत पैसा मांग रहे होते हैं, और लोग वो जाके अपना काम शुरू करा देते हैं। लेकिन वो ये तहकीकात नहीं करते कि कितने लोग कामयाबी की सीढ़ी पे वो एक्चुअली में गए हैं। एक दूसरी चीज, अगर आप किसी कंट्री में बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो कनाडा हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, ये बाहर की सारी कंट्रीज अपने जो लॉयर्स होते हैं उनको एक लाइसेंस देता है। अगर आप किसी भी लाइसेंस्ड एजेंट, नॉट लाइसेंस्ड एजेंट इन इंडिया बट लाइसेंस्ड एजेंट इन द कंट्री जहां आप जाना चाह रहे हैं, अगर आप कभी भी उन एजेंट्स के साथ काम करते हैं, तो आपको दो तरीके फायदे होते हैं।
0: एक, जैसे कि आप हैं,
1: जैसे कि हम हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस है, हम जिम्मेवार हैं। अगर आपके साथ कोई भी नाइंसाफी होती है, हमारा लाइसेंस खतरे में आता है। तो जब किसी का लाइसेंस खतरे में आता है तो वो मेक श्योर करता है कि हमारी रोजी रोटी के ऊपर कोई आंच ना आए। अब हिंदुस्तान में देखा अक्सर ये जाता है कि किसी को अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप क्या करेंगे, शायद मतलब दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मुझे तो ऐसा महसूस होता है क्योंकि जो मुझे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं स्टूडेंट्स जिनके साथ ऐसा हुआ है, वो यही बताते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया, कंप्लेंट्स करी, सब कुछ किया, लेकिन ज्यादा कुछ हुआ नहीं,
0: सामने वाले को जेल नहीं हुई।
1: देखिए, जेल तो बहुत कम की बात है, एक आदमी की जिसकी करियर खत्म हो गया है, अगर किसी को जेल हो भी जाती है 2 साल की 4 साल की, उससे उस जिसका जितने लोगों का करियर तबाह हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती नहीं। तो अपने आप की सुरक्षा स्वयं करें।
0: क्या बात है, सही।
1: तो
0: सही,
1: आपको अगर अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है तो उसके लिए दो चीजें ध्यान रखिए। एक, सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस्ड रजिस्टर्ड एजेंट्स के थ्रू ही काम कराएं, क्योंकि उनकी जवाबदेही बनती है आपकी तरफ
0: जी।
1: अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कभी भी किसी की मुंह जवानी बात ना माने, जो चाहे वो हमारी कंपनी हो चाहे वो कोई भी कंपनी हो, जो भी वो आपको बोल रहे हैं आपका हक है उनसे वो लिख के लेने का।
0: क्या?
1: तो अगर तो वो लिख के देने के लिए तैयार है, आप उनसे आगे बात कीजिए। अगर जो आदमी अपनी बात को लिख के देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर उसकी बात पे जब उसको खुद को भरोसा नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं।
0: सही बात है, सही कहा आपने। सो लिसनर्स, इस बात का आशय यही निकल कर आ रहा है कि इन दो बातों को आप हमेशा ध्यान में रखें, या यूं कहें कि गांठ बांध लीजिए कि जो एजेंट हैं, जो काउंसलर हैं, क्या उनके पास वो हथियार है, यूं कहें कि जिसके बदौलत वो काम कर पा रहे हैं, लाइसेंस गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड किया हुआ है, तो निश्चित तौर पर आप उनसे मिलें, बात करें। दूसरी बात, सर ने जो बात आपको बताई कि फिर आपको दिक्कत परेशानी होगी नहीं और निश्चित तौर पर आपको उस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा, तो इन बेसिक बातों का आप हमेशा ध्यान रखें और गलत दिशा में आप न जाएं। अदरवाइज होता क्या है कि आप अपने आप को ठगा महसूस करते हैं आप रुपयों से रुपया आपका चला गया होता है और फिर इस तरीके के जो एजेंट्स हैं उनसे भी आपका विश्वास उठता चला जाता है। अक्सर सर हमने एक वर्ड सुना है हिंदुस्तान में कबूतरबाजी, यानी कि ये चीज वही बातें हैं जो हम बात आप कर रहे हैं, लोगों से पैसा ऐंठ लिया जाता है, विदेश उनको भेजा जाएगा एजुकेशन के लिए। जो मैं बात कर रहा था कि धरातल पर कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं, भिन्न होती हैं, तो आपकी बात का एक संदेश मैं समझता हूँ कि हमारे श्रोताओं ने समझ ही लिया होगा इसका जो मर्म है। जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे एक जहन में सवाल ये आ रहा है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ने के लिए आगे जाते हैं और कुछ लोग वहीं बस भी जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, बस जाते हैं।
0: तो क्या आप फर्क महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान की जो शिक्षा पद्धति है, विदेशों की जो शिक्षा पद्धति है, क्या एक अंतर आप महसूस करते हैं कि जिसकी वजह से लगता है कि, मैं समझ रहा हूँ कि आपने बताया कि मुझे 2 लाख रुपए महीना चाहिए, हिंदुस्तान में शायद उनको नहीं मिल पा रहा, यही एक वजह रहती होगी कि पैसा बाहर विदेशों में बहुत ज्यादा है, तो किस तरीके से इस बात को आप समझाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: देखिए, मैं आपको पर्सनली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बताना चाहूंगा कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो नोट किया है कि वो ये है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो बाहर मेहनत का आपको जेन्युइन फल मिलता है।
0: जी,
1: हिंदुस्तान में सभी मेहनती है और सभी मेहनत करते हैं, लेकिन एक मेहनत होती है एफिशिएंट मेहनत और एक होती है इनएफिशिएंट मेहनत। तो अब मुझे इतनी हिंदी नहीं आती कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट का आपको मतलब समझा सकूं, बट आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर तो आपकी मेहनत आप एक साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं और बाहर की कंट्री में कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलता है। वहां पर की इज्जत काम की है। अगर आप कोई भी काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा, ऑस्ट्रेलिया में एक प्लम्बर एक डॉक्टर से ज्यादा कमाता है। तो अब आप सपने में भी नहीं सोच सकते ये वाली बात कि एक इंडिया में एक प्लम्बर एक सर्जन से ज्यादा कमा ले, लेकिन ये फैक्ट है। एक इलेक्ट्रिशियन की अपॉइंटमेंट बाद में मिलेगी, डॉक्टर की पहले मिलेगी। ये फैक्ट्स ऑफ लाइफ हैं बाहर के, लेकिन ये वाले फैक्ट्स ऑफ लाइफ इंडिया में अभी आपने कभी देखे ही नहीं, आपकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपको कभी दिक्कत आ सकती है।
0: आपकी बात
1: तो ये फैक्ट बात है। देखिए, बाहर क्या होता है कि बाहर काम की कदर है, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब। सुबह जो कूड़ा लेने के लिए आते हैं लोग, ऑस्ट्रेलिया में वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब उनकी होती है।
0: ग्रेट।
1: और 4 घंटे से 5 घंटे का काम होता है,
0: जबकि हिंदुस्तान में ऐसे कर्मचारियों को हीन भावना से देखा जाता
1: बिल्कुल। देखिए, वही मैं बात बता रहा हूँ कि एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे कल्चर में जहाँ सब सामान्य, देखिए वासुदेव कुटुम्बकम हमारे देश की एक संस्कृति है, लेकिन उसका एक्चुअली में पालन मैं बाहर जाके देखता हूँ।
0: क्या बात है, वाकई ये तो बात आप बहुत अच्छी बता रहे हैं हमें कि इस तरीके से जमीन आसमान का फर्क आप वहाँ महसूस करते हैं। सिर्फ यहाँ जो बातें हैं शायद वो कहने के लिए रह गई हैं। धरातल वाली बात मैं जब लेकर आता हूँ तो शायद इसलिए लेकर आता हूँ कि प्रैक्टिकली हम उन चीजों को नहीं देख पा रहे। एक बात मुझे ये भी समझ में आती है कि राजनीति हर जगह है, बहुत बुरी है। अगर इंसान आगे बढ़ रहा होता है तो उसको कहते हैं ना कि लैग पुलिंग की जाती है, उसको बढ़ावा नहीं मिलता। आपने जो बात रखी कि एक इलेक्ट्रीशियन को तनख्वाह बहुत ज्यादा मिलती है, एक सफाई कर्मचारी का वहां सम्मान होता है, मैं समझता हूँ कि अब हिंदुस्तान में भी समय बदल रहा है।
1: जी,
0: शायद हो सकता है कि पुरानी सरकारों ने कुछ किया, वर्तमान सरकार कुछ कर रही है और आने वाले समय में पिक्चर चेंज होगी। हिंदुस्तान में 5 से 7 साल पहले सर हमने नहीं सुना था, हम जरूर सुनते थे किताबों के माध्यम से कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है।
1: जी,
0: आज एक मूवमेंट चल रहा है, एक अभियान चल रहा है,
1: स्वच्छता
0: अभियान, स्वच्छ भारत। तो लोगों की सोच बदल रही है।
1: बिल्कुल,
0: और ये सोच बदलना वाकई बहुत जरूरी है।
1: देखिए, जब लोग बाहर जाएंगे, जब बाहर जाके, अब पहले दुनिया में बहुत कम लोग बाहर जाते थे।
0: जी,
1: अब आज इंटरनेशनल एयरलाइंस इतनी सस्ती हो गई हैं कि बाहर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। तो बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, और जब कोई भी इंसान बाहर जाता है और वो बाहर की रहन सहन को देखता है तो वो ये सोचता है कि ये जो बाहर हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं, ये सवाल आता है। दूसरा सवाल ये आता है कि जब बाहर जाते हैं तो चाहे वो हम इंडियंस हो, चाहे किसी और कंट्री के लोग हो, सारे एक ही रूल फॉलो करते हैं और सारे बड़े तमीज से वो रूल फॉलो करते हैं।
0: ये सही कहा।
1: तो रूल ऑफ लॉ है बाहर,
0: बाहर
1: हिंदुस्तान में भी रूल ऑफ लॉ है लेकिन दिखाई नहीं देता अक्सर कि जिसका जिसका जो मन कर रहा है वो
0: जी,
1: कर रहा है।
0: जी, जी, आपने तो बिल्कुल बात ऐसी कह दी कि इस बात से एक और बात छेड़ने का मन कर रहा है कि अगर आप जनपद की तरफ जाते हैं तो रूल्स वहां आपको दिखाई देगा।
1: जी,
0: जैसे आप पिछड़े इलाकों की तरफ चले जाएं जहां मतलब कानून का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है तो आप देखेंगे कि गाड़ी में किसी ने बेल्ट नहीं पहनी है या ओवरटेक गलत दिशा से कर रहा है या रेड लाइट को फॉलो नहीं कर रहा है। तो कहने का आशय लिसनर्स यही है कि हमें हर जगह अपनी समझदारी का परिचय देना होगा। जहां आप अपनी समझदारी का परिचय देते हैं तो आपके व्यक्तित्व की पहचान होती है और जिसकी वजह से उस इंसान से हर कोई मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। यही एक वजह है कि अमित बैजल साहब से बात करकर मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है और यहां उनकी बातों के माध्यम से मैं ऑस्ट्रेलिया को देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं कि किस तरीके का माहौल है, किस तरीके के माहौल में लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और लता जी की आवाज में कोई गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो या हम ही खुद प्ले कर रहे
1: हैं।
0: चलिए तो लता जी का खूबसूरत गाना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सुरशादा 90.8 FM पर। जिंदगी में खुश रहने के लिए म्यूजिक एक ऐसा जरिया है कि जिसकी वजह से आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तो इसलिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरशादा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरी यानी गगन के साथ। शारदा विश्वविद्यालय का ये एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। जाहिर सी बात है कि शारदा विश्वविद्यालय में दूर दराज से शिक्षा लेने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, अपने आप को तराश रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जैसे कि सर ने कहा कि खुद से सवाल करिए, खुद का आकलन करिए। अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो एक अच्छे काउंसलर से आप मिलिए, अच्छे एजेंट से आप मिलिए जिनके पास लाइसेंस है। अगर गलत व्यक्ति से मिलेंगे तो मैं समझता हूं कि उस पद्धति से, उस पेशे से हमारा विश्वास भी उठता चला जाएगा। इसलिए जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीजा इन्फो के संस्थापक ऑनर अमित बैजल साहब। तो बैजल साहब, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: ये बातें मैंने गांठ बांध ली और यही वजह है कि मैं अपने श्रोताओं तक रिपीट करके वो बातें पहुंचा रहा हूं।
1: बिल्कुल,
0: कि हमें ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सर, मुझे बात करके वाकई बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए भी सीखने समझने की ये बातें हैं। फाइनली एक संदेश जो आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहते हो, हमारे पेरेंट्स के लिए कहना चाहते हो, हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए कहना चाहते हो, आप चाहते हो कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम सुधर रहा है या इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया में 20 साल का लगभग समय गुजारा है, तो फाइनली एक संदेश आपकी तरफ से क्या होगा?
1: देखिए, मैं यही संदेश दूंगा अपने श्रोताओं को, खासकर उन श्रोताओं को जो अब या तो 12वीं की परीक्षाएं दे चुके हैं और बाहर जाने की तैयारी में लगे हैं, या उन श्रोताओं को जिन्होंने ग्रेजुएशन खत्म करी है और अब अपनी जिंदगी में क्या करना है उसके बारे में सोच रहे हैं, कि आप सभी लोगों को सबसे पहले एक अच्छे काउंसलर और अच्छे लाइसेंस्ड एजेंट की जरूरत है। आप उनके साथ जो भी बात करें, राइटिंग में करें, ओरली कोई बात जबानी की बात नहीं होती है। जो भी आपको प्रॉमिस किया जा रहा है, जो भी आश्वासन आपको दिया जा रहा है, चाहे वो आपका एजेंट दे रहा है, चाहे वो कोई भी दे रहा है, वो हर एक आश्वासन को आपको पेपर पे लिखवा के लेना जरूरी है। अगर आपको वो देने के लिए तैयार नहीं है, आप अपना एजेंट बदल दीजिए, क्योंकि जो सच बोलता है वो लिखने के लिए कभी मना नहीं करेगा, और जो आपको सिर्फ मार्केटिंग कर रहा है वो क्लिक के कभी नहीं देगा। तो एक तो आप इस कसौटी पे हर एक एजेंट को तोलना शुरू कीजिए। दूसरा आपको मैं ये कहूंगा कि अपनी तैयारी कीजिए, अपना लक्ष्य बांधिए। आपको अपनी जिंदगी से चाहिए क्या, जैसे मैंने कहा कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट तक का रास्ता क्या आप को पता है, और अगर पता है तो किसी कंसल्टेंट के पास, जैसे हम लोग होते हैं, आप हमारे पास आइए, हमसे बात कीजिए, हम आपके साथ आपकी बात करेंगे, आपको समझेंगे, और उसके बाद आपको हम आपको आपका सोल्यूशन भी आपके सामने रखेंगे, और हो सकता है कोई और सोल्यूशन जो बेटर सूटेड हो वो भी आपके सामने रख सके। ये हमारा प्रोफेशन है। अब आप जब हमारे पास आएंगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ समझने को मिलेगा, जो मैं आपको इतने छोटे प्रोग्राम में तो नहीं सिखा सकता।
0: मैं वही जानना चाह रहा था कि फाइनली मैं इसी बात पर आता कि कोई अगर आपके पास आना चाहता है, अगर आपसे संपर्क साधना चाहता है, तो वो क्या माध्यम होगा?
1: देखिए, वीजा इन्फो आज की डेट में गूगल देवता हमें हर एक चीज का दर्शन करा देते हैं। तो आप वीजा इन्फो ऑस्ट्रेलिया टाइप करेंगे तो आपको हमारा फेसबुक पेज भी मिलेगा, आप वीजा इन्फो टाइप करेंगे तो आपको हमारे ऑफिस का एड्रेस भी मिलेगा, हमारा ईमेल एड्रेस भी मिलेगा। मेरा नाम अमित है, amit@visainfo.com.au पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी सवाल है आप मुझे बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना आपके श्रोता आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हम तक उनकी
0: आवाज
1: पहुंचाएंगे। बिल्कुल,
0: रियली नाइस टॉक टू यू सर। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके भविष्य के लिए, आपकी कंपनी के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद, धन्यवाद।
0: सो लिसनर्स, आप थे हमारे साथ अमित बैजल साहब, जो कि संस्थापक हैं वीजा इन्फो के। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। हम तो बस यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, गुरुओं का सम्मान करते रहिए, क्योंकि ये सम्मान जब आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप उनसे बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा बताना ना भूलेगा। बस मुझे दीजिए अनुमति, जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की कोई जरूरत। सुनते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार,
1: धन्यवाद।

जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

आप, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वाई वन एंड ओनली सुरुशादा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके लिए जरूरी है कि सुबह 9 से 10 लाइव मुझे सुनिए और सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक सुरुशादा 90.8 एफएम को सुनते रहिए। क्या है खास जानेंगे जरूर, सो डोंट गो एनीवेयर, tuned all your Surushata 90.8 FM with me, mere yani Gagan ke saath. Have a nice day. Good morning.

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: वेलकम बैक, वेलकम ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग। बाद स्टूडियो क्लॉक 9:11 हो चुके हैं। 11 तारीख है, 11 सितंबर। हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं। मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम के साथ दिन की जब शुरुआत करते हैं तो खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि ग्रेटर नोएडा में आज यानी कि 11 सितंबर 2026 को मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 32 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम मिनिमम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने और इसके अलावा गरज चमक के साथ भारी बारिश या आंधी तूफान का अनुमान है। और मौसम कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, बादल घुटे घुटे नजर आ रहे हैं, थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है, उमस महसूस हो रही है, है ना। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। नमी और हवा की अगर हम बात करें यानी कि जिसको हम कहते हैं उमस, ह्यूमिडिटी, तो हवा में नमी लगभग 74% से 75% रहने का अनुमान है। और ट्रैफिक की जब बात आ रही है, हाँ आज ऑन जो ट्रैफिक कम नजर आ रहा है, अभी तक बात क्या, आज छुट्टी है, हमारी छुट्टी क्यों नहीं हुई पूछता है वाले। हमारी छुट्टी इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम उस एरिया को टच नहीं करते जो उस एरिया की तरफ से आ रहे हैं। शारदा विश्वविद्यालय में आज उन स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस लगाई गई हैं। और सच बात तो यह है कि अगर ये निर्णय हर कोई ले ले तो बच्चे परेशान ना हो, गाड़ियां ट्रैफिक में फंसे ना, और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना बहुत जरूरी है। तो इस ब्रिक्स समिट 2026 की जहां हम मेजबान हैं, बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बहुत सब कुछ अच्छा रहे, सुगम रहे, सरल रहे, आसान रहे। और बहुत सारे डेलीगेट्स हिंदुस्तान में आ रहे हैं और एक सकारात्मक इसका परिणाम निकलकर हमारे सामने आए, क्या खास जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
4: हाय मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: कलंदर जुगराज संधू की आवाज जसी की बोल ऑलियो श्रोशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ सुप्रभात गुड मॉर्निंग मैं हूं गगन आपके साथ
1: नमस्कार मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम
0: बिल्कुल आपने सही सुना कि सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ओनली श्रोशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 9-10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा ईश्वर से खुदा से पिता परमेश्वर से यही दुआ यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे मंगलमय गुजरे। चलिए आज है 11 सितंबर जिसका हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था खासकर दिल्ली वालों को।
2: हाँ क्योंकि आज उनकी छुट्टी हो गई है। दिल्ली सरकार ने भारत सरकार ने दिल्ली में आज के दिन छुट्टी कर दी। कल सैटरडे मिल गया संडे मिल गया तीन बार से तीन हैट्रिक लग रही है तीन हैट्रिक।
0: अब
2: कुछ दिन तो गुजारी हमारे गुजरात में ऐसा होटल वाले कह रहे होंगे 3 दिन 4 रात का पैकेज है। आ, आ, आ,
0: लेकिन आते जाते वक्त ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ट्रैफिक अपडेट के बारे में मालूमात होना बहुत जरूरी है क्योंकि दिल्ली इस वक्त किले में तब्दील हो चुके और उस किले को कोई भेद नहीं सकता उस किले को कोई क्रॉस नहीं कर सकता यानी कि आवाजाही आवन जावन वक्त ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ब्रिक्स समिट सेंटर में है और VVIP का जो मूवमेंट है उसकी वजह से बहुत रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं कहीं स्टॉप किए गए हैं कहीं बिल्कुल भी एंट्री नहीं है तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। वैकल्पिक जो रास्ता है यानी कि मैं बात कर रहा हूं मेट्रो की मेट्रो सुचारू रूप से चल रही है और ये जो आयोजन होने जा रहा है कल और रविवार यानी कि 12 सितंबर 13 सितंबर को और बड़ी खुशी की बात है हम बड़े खुश नसीब हैं कि ये मेहमानी का जो मौका है मेजबानी का जो मौका है हमारी झोली में आया और इस तरीके से जब हम कोई कार्यक्रम कर रहे होते हैं तो निश्चित तौर पर भारत का भी एक मान सम्मान बढ़ता है। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि सब कुछ अच्छा रहे बेहतर रहे और क्या है अपडेट्स जानेंगे जरूर सो डॉन को एनीवेयर
3: की वंजारी सिंगर सोनू निगम एंड ऐश्वर्या भंडारी लिरिक्स बाय कुमार म्यूजिक बाय श्रेयस पुराणिक दो दीवाने शहर में ओनली ऑन सारेगामा सो लेट्स एंजॉय इट केवल सुरोशादा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको। इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म

0: एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।
2: बाबूजी धीरे चलना, जरा धीरे चलना, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं, पीछे ही नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, अरे मतलब सब जगह देख के चलो, कुल मिला के ये गाने का भाव यही था। मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ आप लेफ्ट ही देखते रह जाएं या सिर्फ राइट ही देखते रह जाएं, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह देखकर चलेगा, क्योंकि ब्रिक्स समिट 2026, अजी ये क्या था 26 2026, हाँ 2026 ब्रिक्स 26 आयोजित होने जा रहा है। और इसके बारे में मालूमात ये है कि आज अवकाश है दिल्ली में, और लोगों को फ्राइडे भी मिल रहा है, सैटरडे भी मिल रहा है, तो जिस वजह से लोगों ने कहीं ना कहीं घूमी घूमी का प्लान बना लिया है। और अपडेट्स ये है कि अगर आपका आना जाना लगा हुआ है, कुछ काम है, तो कुछ खास जगह है, कुछ खास टाइमिंग है जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मुख्य ट्रैफिक अपडेट और समय यह है कि आज दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक प्रगति मैदान और नई दिल्ली के आसपास खास प्रतिबंध रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक बात। दूसरी बात, दिल्ली के 35 ऐसी जगह हैं जो मेन सड़कें हैं, जो मेन रोड्स हैं, वहां पर ट्रैफिक कंट्रोल रहेगा, और 22 जो मेन मार्ग हैं, जो मेन स्थान है, उनको डायवर्जन किया गया है, यानी कि रूट में बदलाव किया गया है। और छुट्टी के मद्देनजर रखते हुए ध्यान में ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि स्कूल, सरकारी दफ्तर और अदालतें आज बंद हैं, और इसके अलावा राष्ट्रपति भवन, संग्रहालय, अमृत उद्यान, सुप्रीम कोर्ट, मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो संग्रहालय भी 13 सितंबर तक पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे। और कुछ खास जो रास्ते हैं जिनसे बचने के लिए कहा गया, उसके बारे में भी हम बातें करेंगे जरूर। मुझे लगता है कि आज हम सारी इनके बारे में बातें करना बहुत जरूरी है, ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे कि क्या खास हो रहा है, क्या नया हो रहा है। सो डोंट गो एनीवेयर, इंस्टीट्यूट ऑल सुरुशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ, सिर्फ और सिर्फ सुरुशादा 90.8 FM पर, इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ऑफ SSMFE, यानी कि शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट का ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन। आए हैं, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी पूरे होश आवाज में चलाएगा। गाड़ी में नहीं सुन रहे तो उतना ही वॉल्यूम रखेगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपके पड़ोसी को भी दिक्कत ना हो।

0: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
1: जी
0: प्लीज कैरी ऑन।
1: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
0: तो मतलब इस क्लास का सार है, लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
1: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
0: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: माशाल्लाह ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल योर सुरशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और ये सब होता है मोहब्बत में, होता है प्यार में, होता है जब हमारा दोस्त बरसों के बाद मिलता है, ऐसा लगता है कि फिर से आज प्यार हो गया। गुड मॉर्निंग, हंसते मुस्कुराते आप आगे बढ़ते रहिए, लेकिन दिल्ली की तरफ अगर आप कूच कर रहे हैं तो बहुत सोचकर समझकर संभल कर चलेगा, फिर ना कहिएगा कि मैंने आपको अपडेट नहीं किया, मैंने आपको बताया नहीं। ब्रिक्स समिट 2026 होने जा रहा है कल से 13 तारीख तक, और आज दिल्ली चाक चौबंद है। दिल्ली में आज अवकाश घोषित किया गया है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बातें बताई थी, दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के रात के 8:30 बजे तक प्रगति मैदान और नई दिल्ली के आसपास बहुत खास प्रतिबंध रहने जा रहा है, तो बहुत सोचकर समझकर आप आगे बढ़ेगा। और कुछ ऐसे रोड्स हैं जो अवॉइड आपको करने होंगे, जैसे कि सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रेंसिट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, शेरशाह सूरी मार्ग, पुराना किला रोड, तिलक मार्ग, जनपथ, अशोका रोड, बारा खंबा रोड, टॉलस्टॉय मार्ग, शांति पथ, सी हेक्सागन, और इस तरीके से जो कर्तव्य पथ, मतलब ये तमाम रोड्स की एक्टिविटी निकलकर सामने आ रही है कि यहां जाने से आप अपने आप को बचा कर रखेगा। एयरपोर्ट्स की अपडेट निकलकर ये सामने आ रही है कि मेट्रो का आप उपयोग कर सकते हैं, कि मेट्रो आवन जावन में कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मेट्रो पूरी तरह से चालू है।
1: अरे चालू से जी क्यों रखती है,
0: मतलब वो कंपनी चालू नहीं, मतलब एक्टिव है, आना जाना मेट्रो से कर सकते हैं।
1: अच्छा ऐसे आ रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
0: आगे बढ़ने वाली बात यह है कि अतिरिक्त समय यानी कि एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलेगा अगर आप IGI एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, नई दिल्ली पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा समय पहले लेकर निकलेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। नो पार्किंग में अगर आपने पार्किंग की तो आपकी गाड़ी उठ सकती है, दिक्कतें हो सकती है, सो प्लीज समझदारी से आप आगे बढ़ेगा, अपना ख्याल रखिएगा। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुरुशादा 90.8 FM पर।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। हंसते मुस्कुराते आप आगे बढ़ते रहिए, जिंदगी के रास्ते सरल सुगम आसान हो जाएंगे। कब आपकी मंजिल बेहद करीब होती हुई नजर आएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब आप तनाव के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं तो स्ट्रेस की वजह से दिक्कतें परेशानियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। आप अक्सर फोन पर बात करना चाहते हैं, आप फोन उठा रहे होते हैं, आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और इसी वजह से गाड़ी कहीं ठुक जाती है। हाँ, फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इसीलिए बाबूजी जरा धीरे चलो, देख के चलो, आगे ही नहीं, पीछे ही नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे ही नहीं, मतलब दाएं बाएं सब जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे आसपास और क्या अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि अपडेट्स के साथ मैं हमेशा आपको अपडेट रखूं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हम बात करना चाहते हैं। शानदार प्रदर्शन करते हुए वीमेंस T20 एशिया कप 2026 के फाइनल में हम सब ने गृह प्रवेश कर लिया है, तो इस बात के लिए लख लख बधाइयां जी। और ये मैच दुबई में खेला गया। सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 40 रनों से हराकर 10वीं बार एशिया कप के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। और इसकी अपडेट्स जो निकलकर सामने आ रही है कि 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 149 रन भारत ने बनाए और इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर केवल 109 रन ही बना सके। और मैच की जो स्टार खिलाड़ी रही वो रही शेफाली वर्मा। 40 गेंदों में 64 रन की ताबड़तोड़ पारी देखने को मिली और जिसकी बदौलत वो स्टार खिलाड़ी बन गई, मैन ऑफ द मैच उनको चुना गया। और एक मुकाबला यानी कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मुकाबला आज, तो ये देखना है बाकी है कि यहां से कौन पहुंचेगा फाइनल में। ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल योर सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ और फाइनल होगा 13 सितंबर को। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ

ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा वादा है, लेकिन अक्सर लोग कह के पलट जाते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी को सरल सुगम आसान बनाइए, ताकि आपकी जो मंजिल है आपकी बेहद करीब होती हुई नजर आए। ये प्यार में भी ऐसे ही होता है, मतलब मंजिल तक पहुंच जाते फिर पलटी मार जाते हैं लोग। हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का वन एंड ऑनली सुरुशाता 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। हमारे आसपास और क्या है ब्रिक्स 2026 के अलावा, उसके बारे में जान लेते हैं। वैसे देखा जाए कि ब्रिक्स 2026 अपने आप में एक बहुत बड़ा खास पर्व है, और इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी कि अगर आप दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो मैं तो दिल्ली की तरफ पैर कर सोना भी मुनासिब नहीं समझ रहा, ऐसे में लग रहा है कि ट्रैफिक में ना अड़ जाए मेरा पैर। मतलब बहादुर समझ गए कि ट्रैफिक की वजह से दिक्कतें परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन मेट्रो आवन जावन है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप ऑन रोड हैं तो आपके पास कागज पत्री होना बहुत जरूरी है, डिजी लॉकर में आपके पास पेपर्स कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, आपके पास आपका पहचान पत्र भी होना बहुत जरूरी है। और अगर आपसे पुलिस वाले बातचीत करें तो मुझे लगता है कि आप उनको परेशान ना करेगा बल्कि उनको सहयोग करेगा। समझिएगा कि ब्रिक्स 2026 चल रहा है और जिसमें हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इसको हम सफल बनाएं। शाबाश शाबाश मेरे लाल, क्या बात है, जुग जुग जियो, गुड जॉब। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात निकल कर ये सामने आ रही है कि देश भर में आज बैंक कर्मचारियों की हड़ताल और 5 दिन वर्किंग वीक समेत कुछ इस तरीके से, मतलब 5 डे वर्किंग वीक की ऐसी कुछ बात आ रही है, तो जिस वजह से वो अपनी बात रख रहे हैं और आज से 5 दिन तक हड़ताल है। तो इसके बारे में भी अपडेट्स आप ले लीजिएगा, अगर आपका कोई बैंक का काम है तो बहुत सोच कर समझ कर जाएगा या वक्त रहते हुए कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन।

ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ मैं ले रहा हूँ अनुमति। घड़ी का इशारा में हो तो 9:11 फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लिसनिंग टू शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
4: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
3: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
4: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
3: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
4: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
3: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
4: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
3: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
5: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
6: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
5: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्ते जी, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं प्रोग्राम मॉर्निंग ओपीडी। और जैसा आप जानते हैं, ये प्रोग्राम आपके स्वास्थ्य से जुड़ा प्रोग्राम है। और बात करें हम खासकर बच्चों की, शिशुओं की, तो उनके स्वस्थ रहने के लिए और उनके भविष्य के लिए टीकाकरण है वो अति आवश्यक है। इसीलिए आज के मॉर्निंग ओपीडी प्रोग्राम में हम विस्तार से बात करेंगे इम्यूनाइजेशन की, यानी कि टीकाकरण की। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस चंचल लता जी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शारदा स्कूल ऑफ नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले मिस चंचल लता, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ पे बुलाया।
0: तो बात आज करने वाले हैं आपसे टीकाकरण की, इम्यूनाइजेशन की। तो हमारे जो सुनने वाले हैं, लिसनर हैं, उनके भी मन में ये बात होगी कि आखिर ये जो टीकाकरण है, इम्यूनाइजेशन है, वो होता क्या है। तो आपसे ही हम जानना चाहेंगे।
1: जी सर, आपने जो आज का प्रोग्राम चुना है, टीकाकरण क्या होता है, तो टीकाकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर में टीके लगाए जाते हैं ताकि जो व्यक्ति है उसके शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है वो विकसित हो। तो शरीर किसी संक्रमण से बचाने के लिए, हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए टीकाकरण जो है वो किया जाता है। सरल सी अगर भाषा में आपको बताऊं तो जब किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को टीका लगाया जाता है तो वह टीका शरीर में जाकर हमारे उस बीमारी से लड़ने की क्षमता जो है, प्रतिरोधक जो है, वो प्रदान करता है, जिसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। एंटीबॉडीज जो होती है एक तरह से एक प्रोटीन होती है जो कि हमारी बॉडी को जो है, हमारे शरीर को जो है, वो शक्ति प्रदान करता है। तो इससे जब भी अगर कोई असल बीमारी आती है तो उस दौरान हमारे शरीर में जब वो प्रवेश करेगी तो पहले से ही हमने टीकाकरण लगा के रखा है, टीका किया हुआ है, तो टीका जैसे लगेगा तो शरीर में, वो हमारे शरीर में पहले से उसमें जो है वो बीमारी से लड़ने की जो है क्षमता प्रदान की गई है विद द टीका। तो इसको हम जो है टीका लगाने से आसानी से हम असल में बीमारी आती है तो उसको हम हरा सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई टीकाकरण की, इम्यूनाइजेशन की। तो हमारे जो सुनने वाले हैं, लिसनर हैं सुनो शारदा 90.8 FM के, वो जान गए होंगे कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, उन बीमारियों से बचने के लिए आपको उनका टीका पहले से लगवाना होता है। और आगे भी हम बात करेंगे कब कब ये टीके लगवाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैडम ने बताया आपको कि जो बीमारियों से लड़ने के लिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो डेवलप हो जाती है। आगे भी बातें हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर सॉन्ग आपको सुनवा देते हैं और उसके बाद ये जो आज का विषय है हमारा इम्यूनाइजेशन का, इस पर जो बातचीत का सिलसिला है वो यूं ही जारी रहेगा। आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

एक बार फिर से आपका वेलकम है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। और आज मॉर्निंग ओपीडी में हम बात कर रहे हैं इम्यूनाइजेशन की, यानी कि टीकाकरण की। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस चंचल लता जी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शारदा स्कूल ऑफ नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डिपार्टमेंट में। तो जैसा मैडम अभी आपने बताया था

0: कि जो टीकाकरण है वो होता क्या है, कैसे इम्यूनिटी है वो डेवलप होती है। अब बात करते हैं कि जो टीके हैं वो कैसे शरीर में काम करता है।
1: जी बिल्कुल, टीके कैसे काम करते हैं हमारे शरीर के ऊपर। जैसे ही हमने टीका लगाया है तो हमारे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे ये बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा जो है शक्ति प्रदान कर देता है, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज जो है हमारी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जो है उसको बढ़ा देता है तो उस पर्टिकुलर जो बीमारी आती है उसके खिलाफ। तो टीका कैसे काम करेगा, जैसे हमने टीका लगाया है किसी बीमारी के लिए, जैसे कोई वायरल है, कोई बैक्टीरिया के लिए, तो वो एक टीका जो है, टीके के अंदर भी वायरस या बैक्टीरिया होता है जो एक तरह से मरा हुआ होता है, या फिर एक तरह से कमजोर वायरस और बैक्टीरिया होता है, या उसका कुछ हिस्सा होता है। तो जैसे ही उसको हम अपने शरीर पे लगाते हैं, जैसे ले लीजिए BCG, तो BCG क्या करेगा, हमारे शरीर में जो है क्षय रोग से प्रतिरक्षा जो है प्रदान करेगा हमें। तो जैसे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उसे पहचानती है, एंटीबॉडीज जिसको हम बोलते हैं, तो जैसे एंटीबॉडीज अब वो पहचानेगी कि हमारे शरीर के अंदर कुछ खतरा आया है, बाहरी खतरा है, और वो तुरंत ही उस खतरे के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करेगा, मतलब एकदम से वो उसके लिए रिएक्ट कर जाएगा। तो एंटीबॉडीज जो होते हैं, जो एंटीबॉडीज बनते हैं, तो ये एक तरह से विशेष प्रोटीन रहती है जो उस बीमारी से लड़ने के लिए शरीर को तैयार करता है। तो अब हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं उनकी एक मेमोरी होती है, याद करने की क्षमता होती है, जो याद रखती है कि ये पहले वायरस आया था, तो अब दोबारा अगर वो जाएगा हमारे शरीर के अंदर तो वो उसके खिलाफ फिर इमिडिएटली जो है वो रिएक्ट करना शुरू कर देगा। तो मेमोरी सेल्स जब बनते हैं तो ये याद रखते हैं कि किस वायरस से कैसे लड़ा जाता है। जैसे अगर हमने इम्यूनाइजेशन में अपना BCG दिया है, पोलियो दिया है, टीकाकरण करवाया है अगर हमने, तो उसमें पहले उसने पहचान लिया कि ये वायरस मेरे शरीर में पहले भी आया है। अगर अब वो दोबारा उसके शरीर में जाएगा, किसी व्यक्ति के शरीर में जिसको पहले टीकाकरण लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, भविष्य में असल में अगर वो वायरस आ जाता है, पोलियो वायरस अगर असल में आ गया, जैसे TB के अक्षय रोग का वायरस अगर आ गया, तो वो जो है उसको पहचान लेगा दोबारा से अगर वो आ गया शरीर में, तो एकदम से उसके ऊपर वो तुरंत पहचान के उससे लड़ना शुरू कर देगा, इंसान के शरीर जो है बीमारी से उसको बचा देगा। तो ये इस तरह से काम करता है।
0: बिल्कुल, तो ये तो बात रही टीके कैसे काम करते हैं। अब आगे हम अपने जो सुनने वाले हैं, हमारे लिसनर हैं, उनको बताएंगे कि टीके जो हैं किन बीमारियों से शरीर की रक्षा करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक और सॉन्ग, और उसके बाद लौट के आते हैं। आप सुनते रहिए, सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। और आज के मॉर्निंग ओपीडी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इम्यूनाइजेशन की, यानी कि टीकाकरण की। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ में हैं मिस चंचल लता जी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शारदा स्कूल ऑफ नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डिपार्टमेंट में। तो मिस चंचल लता, आपसे जानना चाहेंगे कि जो टीके हैं वो किन बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं।
1: जी शशि जी, बिल्कुल, जैसे आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है
0: जी,
1: कि जो टीकाकरण है हमें कौन सी बीमारियों से बचाता है। तो जैसे टीकाकरण हम लगाते हैं बच्चों में या माँ को लगाते हैं, तो ये जो है कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों से हमें बचाता है, हमें कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा जो है ये प्रदान करता है। तो कुछ ऐसे हैं वायरस, जैसे कि पोलियो है हमारे पास, टीवी है हमारे पास, जिसको हम क्षय रोग बोलते हैं, क्षय रोग से हमें या पोलियो वायरस से हमें ये जो है वो क्षमता प्रदान करता है लड़ने के लिए टीकाकरण। और डिप्थीरिया है, काली खांसी है, खसरा जैसे रोग हैं और लीवर की जैसी बीमारियां हैं। तो जैसे पोलियो वायरस आपको पता ही है, लकवा होता है, एक तरह से अपंगता हो जाती है, तो इससे ये हमें बचाव करता है पोलियो वायरस से। टीकाकरण जो है बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है, रुबेला जैसी बीमारियां हैं, मीजल जैसी बीमारियां हैं, निमोनिया है आपके पास जैसे, वो उससे भी हमें ये जो है रक्षा प्रदान करता है। अभी आपने देखा होगा कि हमें कोविड हुआ था, कोविड जिसको कोरोना वायरस बोला गया, तो कोरोना वायरस में भी हमें जो है टीकाकरण करवाया गया सबको। तो ये जो टीकाकरण करवाया गया वो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए, उसमें प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत ही जानलेवा और गंभीर बीमारियों से हमें जो है बचाता है।
0: बिल्कुल, तो आपने जाना कि जो टीकाकरण है वो क्यों ज़रूरी है और किन बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। अभी आपने कुछ बीमारियों के नाम बताए, तो जैसे पोलियो आपने बताया,
1: हाँ,
0: टीबी
1: जी,
0: जिसको हम के क्षय रोग कहते हैं
1: जी,
0: और डिप्थीरिया है, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस, निमोनिया। तो अब आपसे जानना चाहूंगा ये जो बीमारियां, इनके टीके किस अवस्था में लगाए जाते हैं।
1: जी सर, जरूर बताना चाहूंगी। इसका एक जो इम्यूनाइजेशन टीकाकरण स्केड्यूल बोलते हैं इसको, टीकाकरण का एक चार्ट बनाया गया है, वो हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है इसको, और WHO ने जो है इसको रिकमेंड किया है कि हमें जो है हर एज में, जैसे बच्चे को हमें जन्म होते ही शुरू कर देना चाहिए टीकाकरण, और 5 साल तक हमें बच्चे को जरूर लगाना चाहिए। वैसे तो 16 साल तक होता है सर लास्ट टीकाकरण, पर 5 साल तक जो है हमें जरूर करवाना चाहिए टीकाकरण। दूसरा, हमारी जो माताएं होती है, माताएं मतलब जो माँ बन गर्भवती महिलाएं जिनको हम बोलते हैं, गर्भवती महिलाओं को जो है हमें टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। अब ये टीकाकरण जो है, जैसे अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग तरीके से हमें टीकाकरण देते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है, जब जन्म होता है बच्चे का, उसी टाइम पे हमने जो BCG जैसे मैंने आपको बोला कि क्षय रोग से प्रतिरक्षा में प्रदान करता है, तो वो बहुत जरूरी होता है कि जन्म जैसे होता है बच्चे को, तो BCG, OPB का मतलब है कि हम मुंह के द्वारा जो है ओरल पोलियो वैक्सीन जो है हमें जरूर देनी चाहिए, और हेपेटाइटिस बी। तो ये तीन वैक्सीन जो होते हैं, ये तीन टीकाकरण जो है हमें वो जन्म पर ही लगा लेने चाहिए।
0: बिल्कुल, जैसे मैडम आपने बात की BCG की, जो शिशु अवस्था में लगाया जाता है, देखा जाता है कुछ लोग बच्चों पे काम कर रहे हैं, कोई कहीं काम कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके अगर बच्चे छूट जाते हैं
1: जी,
0: तो
1: जिसने BCG नहीं लगाया है तो उसको इन फ्यूचर जैसे होता है उसको कि उसको टीवी की बीमारी हो सकती है, क्योंकि उसकी बॉडी तैयार नहीं है, उसका शरीर तैयार नहीं है उस बीमारी से लड़ने के लिए। तो जब उसको तैयार करने के लिए ही, तो हमारे शरीर को आगे किसी बीमारी से लड़ने के लिए हम क्या करते हैं, टीकाकरण देते हैं। वैसे तो जो है गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है कि जैसे बच्चों के लिए आशा वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स क्या करेंगी, वो जाके गांव-गांव में जाके पोलियो का या BCG का इम्यूनाइजेशन का सारा दवाइयां लेके जाएंगी, और वहां उनको इंजेक्शंस या फिर जो दवाइयां दी जाती हैं, तो जिससे हम ये तय करते हैं कि कोई भी बच्चा वो छूट ना पाए वहां पे, हम सबको कवर कर सके, चाहे वो गर्भवती महिला हो चाहे वो बच्चा हो।
0: बिल्कुल, तो हम भी रेडियो के माध्यम से और आप भी बता ही रही हैं कि टीकाकरण करवाना कितना ज़रूरी है, और जो ये कम से कम 12 बीमारियां बड़ी ख़तरनाक बीमारियां हैं, अगर इनके आप टीके नहीं लगवाते हैं तो फिर भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी बन सकती है। तो आगे भी हम बातें करते रहेंगे, अभी तो बहुत सारी बातें हैं टीकाकरण के बारे में, और आगे हम जानेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो टीके लगते हैं कि किसी के कोई दर्द हो गया है या टीका सूज गया है, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे आखिर इसकी क्या वजह है, क्या इनके साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन उससे पहले अपने लिसनर्स को सुनवाते हैं एक सॉन्ग और फिर लौट के आते हैं। सुनते रहिए, सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का आपका अपना रेडियो स्टेशन।

0: आप सुन रहे सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। प्रोग्राम का नाम मॉर्निंग ओपीडी और आज इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इम्यूनाइजेशन की, यानी कि टीकाकरण की। बहुत सारी बातें इससे जुड़ी आप जान चुके हैं, टीकाकरण क्या होता है, कैसे काम करता है और किस तरह से आपकी जो इम्यूनिटी है वो डेवलप होती है। अब बात कर लेते हैं कि जो टीकाकरण है उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। और सुनने में ऐसा आता है कि कोई टीका बहुत दर्द करता है, टीके वाली जगह सूज जाती है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है?
1: जी, जैसे शशि जी आपने पूछा है कि टीकाकरण के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसे तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बट फिर भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे अगर कुछ हो जाता है तो हल्का फुल्का, जैसे हम क्या कर रहे हैं, वायरस डाल रहे हैं, तो कुछ तो उसका असर होगा हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि हम कोई बाहरी चीज जा रही है शरीर के अंदर, तो अंदर कोई रिएक्शन तो होगा उसका, कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा हमारे शरीर का। तो उस रिस्पॉन्स में हल्के फुल्के जो है वो सिम्टम्स नजर आ जाते हैं, हल्का फुल्का, जैसे सामान्य दुष्प्रभाव हो जाते हैं, जैसे कि बुखार आ जाता है। बच्चे को जैसे इंजेक्शन लगाएंगे तो उसको बुखार जो है वो आएगा ही आएगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, और एक दो दिन तक वो बुखार रह सकता है। और जैसे हम उसके लिए फिर हम दवाइयाँ भी देते हैं, डॉक्टर जो डॉक्टर की सलाह से डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं कि इसको पैरासिटामोल दे दो, तो बच्चे को उस तरह से दवाइयाँ भी दी जाती हैं उस चीज़ के लिए। दूसरा है हमारा, जैसे टीका हम लगाते हैं तो हल्का फुल्का BCG है, BCG है या टेटनस का इंजेक्शन जब हम लगाते हैं तो वहाँ पे हल्की फुल्की जो है वो सूजन आ जाती है या दर्द हो जाता है, तो वो भी ठीक है, उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, ये सिर्फ एक नॉर्मल सा रिएक्शन हमारी बॉडी जो है वो शो करती है। हमारी बॉडी जो है जब हम इंजेक्शन कोई बाहरी चीज ले रहे हैं तो उसमें एक वायरस है, तो अगर जब वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो हमारा शरीर उसके खिलाफ तो लड़ेगा। अगर कोई हमारे पास भी कोई बाहर से कोई आ रहा है और हमें डरा रहा है, धमका रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम भी तो उसके खिलाफ लड़ते हैं ना, हम भी उससे लड़ाई करते हैं। वैसे ही जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस अगर गया है, कोई दवाई लगी है जो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, बाहर का हिस्सा है, तो वो हमारी बॉडी उससे रिएक्ट करेगी, तो उस रिएक्शन में हल्के फुल्के जो हैं वो दुष्प्रभाव नजर आ जाते हैं, जैसे कि बुखार आ जाता है। ज्यादा से ज्यादा वो एक दो दिन तक रहता है बुखार। उसके अलावा हो गया हमारा, जैसे कि अगर हम सूजन है, हमें सूजन हो जाती है, जैसे हम टीका BCG लगा रहे हैं या टेटनस लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से दर्द हो जाती है या थोड़ा सा सूजन हो जाती है, कुछ ऐसा भारीपन सा एहसास रहता है उस जगह पे जहाँ पे हमें

0: इंजेक्शन लगा हुआ है, तो इंजेक्शन वाले हिस्से में या टीका वाले हिस्से में जो है वो झुंझुनापन या झुंझुनी सी या जैसे बोल सकते हैं भारीपन सा वहां पे उनको महसूस होगा। थोड़ा सा हो सकता है बच्चे को चिड़चिड़ापन हो जाए, थकान महसूस करे, हल्के हल्के शरीर पे दाने हो जाए, तो इस तरह से कुछ हल्के फुल्के जो है टीके के साइड इफेक्ट रहते हैं। अगर गंभीर जैसे दुष्प्रभाव होते हैं वो बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही अलग बात है, एक दुर्लभ बात होगी अगर किसी को अगर टीकाकरण के बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव हो जाए। जैसे अगर किसी को एलर्जी हो जाती है, जैसे किसी भी तरह से कुछ एलर्जी हो जाती है, तीव्र कुछ रिएक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर, दौरे जैसे पड़ना, तो उस कंडीशन में हमें जरूर जांच करवानी चाहिए। अदरवाइज ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज के लिए कोई ऐसा दवाई या मेडिसिन लेनी पड़े, पर हल्का फुल्का बुखार के लिए हमें ऑलरेडी डॉक्टर्स जो हैं वो चीजें दे देते हैं।
1: बिल्कुल, तो सही आपने बताया कि जब टीकाकरण होता है तो यानी कि हल्का बुखार या दर्द होता है तो कहीं ना कहीं जो वैक्सीन के जरिए जो वायरस शरीर के अंदर डाला गया जिस बीमारी से लड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो रिएक्ट कर रहा होता है। तो ये मान लीजिए जो वैक्सीन लगी है आपके अंदर काम कर रही है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक और बात यहाँ पर मैं जान लेता हूँ, जैसे कि जब वैक्सीनेशन होता है, कोई टीका लगाया जाता है, तो उस वक्त कैसे अपना ध्यान रखा जाए, यानी जो छोटे बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या कोई और हैं, तो उनका खान पान कैसा होना चाहिए और किस तरह से उनको अपने बच्चों का अपना कैसे ख्याल रखना चाहिए?
0: जी, इसके लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर डाइट नहीं है किसी को कि अलग से हमने कुछ खाने पीने के लिए देना है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। टीकाकरण में कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि हल्का फुल्का बुखार आता है, जैसे अगर सूजन आ गई है, दर्द महसूस हो रहा है, तो हल्का सा हम ठंडाई का सेक कर सकते हैं, कुछ कोल्ड कंप्रेस लगा सकते हैं, किसी कपड़े में हल्का सा बर्फ बांध के हल्का हल्का उसको सेक दे दिया, तो इस तरह से हम लगा सकते हैं टीके वाली जगह पे। बस ये चीज का ध्यान रखना, जैसे टीका लगता है तो हमने उस टीके वाली जगह को ना ही तो दबाना है और ना ही तो उसको रब करना है, उसको दबाना नहीं है और रगड़ना नहीं है, ठीक है, ताकि उसमें क्योंकि बच्चे को हो सकता है जलन हो जाए, तो जलन हो सकती है या फिर मदर का या किसी ने जिसको उसको रगड़ा है उस जगह को, तो वहाँ पे जगह है, छेद बना हुआ है, इंजेक्शन लगा है, अगर हम रगड़ेंगे उस जगह को तो वहाँ उसका हाथ में इन्फेक्शन कीटाणु जो भी होगा वो उस बच्चे के अंदर जा सकता है, तो वैसा काम नहीं करना है। और ऐसा कोई पर्टिकुलर डाइट या फिर पर्टिकुलर ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, बुखार के लिए पहले ही जो डॉक्टर्स हैं वो दवाई दे देते हैं, अगर ऐसा लगे ज्यादा तेज बुखार लगे तो हमें उस दवाई को दे देना है।
1: बिल्कुल, तो आपने जो बातें बताई हैं हमारे जो सुनने वाले हैं, अगर उनके साथ ऐसा होता है तो जरूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे। आगे और भी बातें हैं, उन पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और एक बार फिर से अपने जो लिसनर्स हैं उनको याद दिला दें कि आज हम बात कर रहे हैं इम्यूनाइजेशन पर, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक और म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, जल्दी से लौट के आते हैं, सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। प्रोग्राम चल रहा है मॉर्निंग ओपीडी और आज इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इम्यूनाइजेशन की और इस विषय पर हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिस चंचल लता जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शारदा स्कूल ऑफ नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डिपार्टमेंट में। बहुत सारी बातें चंचल लता जी आपने बताई हैं और अब बात कर लेते हैं कि हमारे जो सुनने वाले हैं मन में बहुत सारे सवाल उनके उठते रहते होंगे हमारी तरह कि जो टीकाकरण है, टीका लगवाना है, इसका क्या महत्व है, क्यों जरूरी है?
1: जी बहुत अच्छा सवाल है शशि जी, टीकाकरण का महत्व, क्योंकि ये देखो जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि बीमारियों से लड़ने की हमें शक्ति प्रदान करता है, तो ये बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाव देता है, पहली चीज तो ये हमने बता दी आपको। दूसरा हो गया जैसे WHO के अनुसार जो टीकाकरण हम देते हैं हर साल जो है लाखों बच्चों की जानें जो है हम बचा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण की वजह से। बच्चों की मृत्यु दर में कमी आ चुकी है, रोगों का जो उन्मूलन है, जैसे भारत में चेचक है और जैसे कि भारत में हमारा जो है पोलियो है वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से हमारा जो है खत्म हो चुका है, इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है, तो ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है तो हमारे जो टीकाकरण है उसकी वजह से ही ये मुमकिन हो पाया है कि हमने इन बड़ी गंभीर बीमारियों को जो है अपने भारत को मुक्त कर दिया गया है। तो अब जो है जैसे हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का ये काम करता है, हमारी जो इम्यूनिटी है जैसे एंटीबॉडीज है हमारे शरीर को ताकतवर बनाने का भी एक अधिकांश हिस्सा इसका रहता है टीकाकरण का, तो बहुत सारी बीमारियों को उसके फैलाव से रोकने के लिए टीकाकरण सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीमारियों से ही रक्षा प्रदान कर रहा है सिर्फ उसी को जो बच्चे को लगा रहे हैं, पर इसके साथ साथ क्या है इसके फैलाव में भी रुकावट करता है।
0: तो ये तो बात रही कि जो इम्यूनाइजेशन का महत्व क्या है। अब एक और बड़ी परेशानी हमारे समुदाय में देखने को मिलती है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों का है वो टीकाकरण नहीं करवाते, उनको कहीं सुनने को मिल जाता है या देखने को मिल जाता है दर्द हो जाता है, बुखार आ जाता है या कोई सूज गया है, इस वजह से उनको लगता है कि कहीं हमारा बच्चा और ज्यादा बीमार ना हो जाए, तो ऐसे लोगों के लिए कैसे अवेयर किया जा सकता है?
1: जी शशि जी, हम जो लोगों को अवेयर कर सकते हैं, अवेयर जैसे कि हम अभी हमने रिसेंटली एक प्रोग्राम किया जी, जो कि अंडर द गाइडेंस ऑफ अवर डीन सर डॉक्टर आर श्रीराज कुमार उनके गाइडेंस में और हमारे HOD की गाइडेंस में हमने ये काम किया कि हम जैसे PHC में जब टीकाकरण हो रहा था वहां पे जाके हमने क्या किया, लोगों को वहां पे इकट्ठा किया, एकत्रित किया एक जगह पे और उनके साथ हमने बातचीत की, उनसे पूछा कि आप क्यों आए है, क्या करना है, इसका फायदा क्या है। तो कुछ लोगों को बहुत सारी इसकी जानकारियां भी थी कि हमें ये फायदा देता है, बहुत सारे लोग इससे खुश भी थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ये चीजें ऐसे लगता है कि नहीं हमें जबरदस्ती भेजा जा रहा है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हमें अवेयरनेस जरूर देनी चाहिए, गांव-गांव में जाके हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए इस चीज के बारे में, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, उसके बारे में बताना चाहिए। तो हमने वैसा ही काम किया कि हम PHC में गए थे जहां पे लोग बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, हमें लगा कि यहां पे एक जगह पे हमें जाके बताना चाहिए लोगों को। तो वहां पे हमने जब उनको बताया कि इसके फायदे क्या हैं, बहुत सारे लोगों ने बताए भी और बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं था, तो हमें हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए लोगों के अंदर, ताकि लोग जो है जागरूकता जितनी ज्यादा होगी तो लोग उतने ही ज्यादा इस चीज के प्रति जो है वो अपना कार्य शो करेंगे कि नहीं हमें ये काम करना चाहिए, टीकाकरण लगाना चाहिए। लोगों को आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता है कि इसका फायदा क्या है, और जब फायदा नहीं पता होगा तो फिर वो कैसे जाएंगे इस चीज के बारे में इंजेक्शन लगाने के लिए।
0: बिल्कुल चंचल लता जी, और हम भी रेडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि देखिए जब आप अपने बच्चों का टीकाकरण नहीं करवाते हैं तो जो बहुत सारी गंभीर बीमारियां आज जिनके बारे में हमने चर्चा की है कि वो किस तरह से टीकाकरण के माध्यम से आपके बच्चों का बचाव होता है, तो वो बीमारियां कहीं ना कहीं आपके बच्चों को घेर लेंगी। और कहते हैं ना कि जब हमारे जो नन्हे मुन्ने हैं वो बीमार रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो देश का भविष्य है वो खतरे में होगा। सरकार भी चाहती है, हम भी सब चाहते हैं कि हमारे जो देश का भविष्य है वो सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, और जब ये स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, गाँव का निर्माण होगा, शहर का निर्माण होगा और पूरे भारत वर्ष का निर्माण होगा। जब हमारा पूरा भारत वर्ष स्वस्थ होगा तो हम सब शक्तिशाली होंगे और पूरे विश्व में अग्रिम पंक्ति है उसमें आके खड़े होंगे। तो अपने भारत देश को शक्तिशाली बनाने के लिए हम सब का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों का, जो गर्भवती महिलाएं उनका, और जब भी जिस बीमारी का टीकाकरण हो उनका टीकाकरण ज़रूर करवाएं, और साथ ही साथ इसमें सपोर्ट भी करें, सहयोग करें, और जिनको नहीं पता टीकाकरण के बारे में और आपको पता है तो उनको जागरूक करना भी आपका फर्ज बनता है। तो मिस चंचल लता जी, आज आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालकर हमसे बात की, हमारे लिसनर्स के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी और ज़रूर आपकी बताई गई बातों का वो ध्यान रखेंगे और जो भी टीकाकरण का अभियान होगा उसमें अपनी भूमिका है वो निभाएंगे, क्योंकि कोई भी अभियान होता जब तक जन सहभागिता नहीं होती, जब तक वो अभियान पूरा नहीं होता, तो ज़रूर हमारे जो सुनने वाले हैं अपनी सहभागिता करें कार्यक्रम में आने के लिए। मिस चंचलता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें बुलाने के लिए, हमें ये मौका देने के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आपका, धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर श्रीराज कुमार, अवर डीन ऑफ दैट नर्सिंग कॉलेज, एंड थैंक यू सो मच हमें यहाँ बुलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है, तो फिर कहीं देर ना हो जाए। कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। किसान मित्रों, आजकल अधिक उत्पादन के लिए खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे हमारी खेती में बहुत ज्यादा लागत आ रही है और जल, वायु, भूमि, साथ ही हमारा जो वातावरण है वो भी प्रदूषित हो रहा है। और इसके साथ ही जो खाद्य पदार्थ हैं जो हमको खेती से मिलते हैं वो भी जहरीले हो रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार की सभी समस्याओं से निपटने के लिए जैविक खेती करने की जो सिफारिश है हमारे कृषि वैज्ञानिक आजकल आपसे कर रहे हैं। भारत सरकार भी जैविक खेती को अपनाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है, साथ ही राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन भी चला रही है, जिसके अंतर्गत जैविक खेती करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है और जैविक खेती करने के तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं। किसान मित्रों, रासायनिक उर्वरकों के बहुत ज्यादा प्रयोग से हमारे जो खेतों की मिट्टी है उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो दिन प्रतिदिन नष्ट होती चली जा रही है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बचाने में जो जैविक खाद है वो काफी कारगर है। तो किसान मित्रों, जैविक खेती करके आप भी कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए बस जरूरत है आपको जागरूक होकर जैविक खेती करने के तौर तरीकों से भली भांति परिचित होने की। किसान मित्रों, जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती है, साथ ही हमारे किसान भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है, क्योंकि जब लागत कम होगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो आमदनी है वो बढ़ेगी। और किसान मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप जैविक खेती करेंगे और जैविक खेती करके जब कोई भी फसल आप प्राप्त करेंगे उसको बाजार में ले जाएंगे तो उन जैविक उत्पादों का बाजार में बहुत ज्यादा मूल्य आपको प्राप्त होता है, क्योंकि आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसको शुद्ध अच्छी चीज मिले ताकि वो स्वस्थ रहे। और किसान भाइयों, आपको बता दें कि आज के आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती करना बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो किसान मित्रों, आप भी जैविक खेती करें ताकि हमारा जो भारत है वो स्वस्थ बने, शक्तिशाली बने। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही जैविक खेती की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार है सुनील चौहान।

अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान से ये रागनी। किसान मित्रों, खेती में बागवानी तेजी से उभरता हुआ कृषि व्यवसाय है। इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है। जो हमारे युवा साथी हैं, जो रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, वो बागवानी में रोजगार हासिल कर सकते हैं। बागवानी अपने अंदर तमाम संभावनाएं समेटे हुए है, जो हमारे किसान भाइयों के लिए भविष्य में सुनहरे आय का एक साधन बन सकती है। किसान मित्रों, कुछ सालों में बागवानी फसलों के उत्पादन में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। फल सब्जी की मांग बाजार में साल भर रहती है। पारंपरिक फसलों में बढ़ते नुकसान और कम होते मुनाफे के मद्देनजर अब हमारे किसान भाई बागवानी की ओर बढ़ रहे हैं। और हम वर्तमान समय की बात करें तो देश के बहुत से हमारे ऐसे किसान भाई हैं जो बागवानी करके अच्छी खासी आय प्राप्त कर रहे हैं। खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा बागवानी में हमारे किसानों को अधिक आय के साथ ही विभिन्न प्रकार के फायदे हैं। खाद्यान्न फसलों के उगाने के लिए पर्याप्त भूमि की आवश्यकता होती है, जबकि बागवानी का कार्य आप कम भूमि पर आसानी से कर सकते हैं। बागवानी

फसलों की सहायता से हमारे किसान भाई अपनी कम भूमि पर भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार एक मिशन भी चला रही है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। और इस मिशन के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को बागवानी फसलों के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही किसान मित्रों, आपको बता दें कि शहरों में सब्जी की खेती एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें रोजगार के अवसरों की वृद्धि हो रही है। शहरी कृषि में सब्जी की खेती से न केवल शहरों में ताजी सब्जियों की आपूर्ति होती है, बल्कि ये रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। तो किसान मित्रों, आप भी बागवानी करके अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं और अपने जीवन को, अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही बागवानी की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं लोकेंद्र सिंह।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे लोकेंद्र सिंह से ये रागनी। किसान मित्रों, अगर आप खेती के साथ साथ मछली पालन करके और ज्यादा आमदनी करना चाहते हैं तो आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठा सकते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन आमदनी का एक बढ़िया स्रोत बन के सामने आया है। बड़ी संख्या में हमारे ग्रामीण बहन भाई इस व्यवसाय की तरफ रुख कर रहे हैं और ठीक ठाक मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार भी कई योजनाओं के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को मछली पालन की शुरुआत करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करती है। इसीलिए भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की थी। इसे मछली पालन के क्षेत्र में अब तक की चलाई जाने वाली योजनाओं में सबसे बड़ी योजना माना जाता है। इसके तहत हमारे किसान भाइयों को मछली पालन के लिए ऋण और निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आप खेती के साथ साथ मछली पालन भी करना चाहते हैं और आपके पास इस काम को शुरू करने के लिए पैसा नहीं है तो आप अपने क्षेत्र के मत्स्य पालन विभाग में जाके संपर्क कर सकते हैं और मछली पालन व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं बलराम बैसला।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे बलराम बैसला से ये उपदेश, और इसी उपदेश के साथ ही आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नाम तो सुना ही होगा।
3: राम राम दोस्त राम, सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है, या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रही हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए, और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
4: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
5: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा, और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, गम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
4: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं?
5: हाँ, ये बहुत खौफनाक है, और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुठलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
4: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज ए इंस्पिरेशन देखता है, और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
5: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा, एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती है। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर, ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है, वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
4: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर, कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे, बड़े नाम, कहानियां बदल जाती है, लेकिन कम्युनिटी, छोटा सा प्रदेश, उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
5: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म ले, बिकॉज रेडियो इम्पैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलिवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
3: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलिवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुनो शारदा 90.8 एफएम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: Hi everyone, this is Dania Joshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM.
1: Namaskar, main hoon Abhinav Chaturvedi aur aap sunte rahiye Suno Sharda 90.8 FM.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

मेहरबानो, एक फूल खिला था, एक फूल खिला था, आंधी में टूट गया, बनिया बनाया आज मुकद्दर फूट गया। एक मेरी माया थी जीवन का सहारा, आज उस कमर में बैरी बिशियर चूट गया। मेहरबानो तारा, रोहतास की लाश के लिए कफन तो होती है, मेरे दोस्तों चौगिरदे कोई दिखाई नहीं दिया। आज ऐसी विपदा पड़ गई कि आज कमर के लिए

0: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी,
0: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी ओकेरा के तुरंत साफ करें, जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे सब के साफ सफाई करी ले हम।
2: और आस पास कहूँ भी टायर नर...

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं, उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम, जिसका नाम है हिंसा को नो, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो प्रज्ञा 90.4 MHz, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं, दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
5: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त एंड होस्ट आरजे नव्या, और आज हमारी आपसे एक खास मुलाकात हो रही है कार्यक्रम हिंसा को नो लेकर, जहां महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की नई कहानी को लेकर हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। हिंसा अपने आप में ही एक ऐसा शब्द है जो ये दर्शाता है कि हम अपनी शक्ति का गलत उपयोग कर किसी के विरुद्ध अत्याचार करें, और ये अत्याचार किसी भी रूप में हो सकता है। हिंसा के कई रूप होते हैं जो अक्सर ज्यादातर महिलाओं के साथ ही देखे जाते हैं।
6: हमारे समाज में कई ऐसी महिलाएं हैं जो इस तरह की हिंसा की शिकार हैं, लेकिन इस बात से अनजान है कि उनके साथ जो भी होता है वो हिंसा ही है और किस तरह की हिंसा है, इसके लिए क्या करना चाहिए, इन सब चीजों से अपरिचित है।
5: हिंसा का एक दूसरा रूप घरेलू हिंसा होता है, और आज एक ऐसी ही कहानी घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई लेकर हम आपके बीच मौजूद है। यह कहानी एक ऐसे गरीब परिवार की है जहां पैसे की लाचारी तो थी ही, लेकिन उन्हें कोई बच्चा भी नहीं था। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान थे। शादी के बाद 6 साल तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन 7वें साल भगवान की दया से वो महिला गर्भवती हुई और उसे एक बेटी हुई। अपनी इकलौती बेटी को दोनों पति पत्नी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। पैसे की लाचारी होते हुए भी दोनों अपनी बेटी की हर ख्वाहिश, उसकी हर फरमाइश पूरी करते थे, उसे बड़े नाजों से पालते थे। दोनों ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम मेघा रखा, मेघा वक्त के साथ बड़ी होती गई। एक वक्त आया जब मेघा 4 साल की हो गई थी। जब मेघा 4 साल की हो गई थी तब उसके पिता को उसकी पढ़ाई की चिंता होने लगी। कहीं से व्यवस्था करके वो मेघा का दाखिला पास के एक स्कूल में करा देते हैं, जहां पर उनकी अच्छी खासी जान पहचान होती है और जान पहचान होने की वजह से मेघा की फीस में थोड़ी सी माफी हो जाती है। मेघा के पिता किसी भी तरह मेघा की पढ़ाई पूरी करवाना चाहते थे और उन्होंने जैसे तैसे मेघा की पढ़ाई पूरी भी करवा दी। मेघा अपने माँ बाप की इतनी दुलारी थी कि उसे घर का कोई काम ही नहीं आता था, क्योंकि उसकी माँ ने कभी उसे कोई काम करवाया ही नहीं था। मेघा के पिता की स्थिति जैसी थी उतने में ही वो मेघा को खुश रखते थे, उसकी हर जिद पूरी करते थे। वैसे तो मेघा इतनी सुंदर थी कि उसे जो एक बार देखता वो देखता ही रह जाता। उसकी सुंदरता के चर्चे गांव में भी होते थे। पास के ही गांव का जमींदार, जिसने मेघा की सुंदरता के बारे में सुना और मेघा को देखने उसके घर आया, उसने मेघा को देखा और उसके पिता से मिलकर अपने बेटे के लिए मेघा का हाथ मांगा। मेघा के पिता बहुत खुश हुए, क्योंकि मेघा की शादी के लिए खुद रिश्ता उनके घर आया था। वो तो शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन मेघा और उसकी माँ शादी के लिए अभी तैयार नहीं थे। उसके पिता ने दोनों को समझाने की कोशिश की और बताया कि हमारे पास पैसे की कमी है और हम चाहकर भी इतना अच्छा रिश्ता मेघा के लिए नहीं ढूंढ पाते। ये सारी बातें समझाने के बाद मेघा की माँ इस शादी के लिए तैयार हो गई। मेघा और नकुल की शादी भी हो गई और जब मेघा अपने ससुराल गई तो उसने नकुल से कहा कि मैं अभी शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। पहले तो नकुल मानने को ही तैयार नहीं था, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो मान गया और चुपचाप सो गया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। मेघा की सास का व्यवहार मेघा के साथ कुछ ठीक नहीं था। मेघा की सास हमेशा उसे इस बात के ताने देती थी कि तुम्हारे पिता ने हमें एक पैसा नहीं दिया और ना ही तुम्हें कोई सोने की गहने दिए। मेघा ने बताया कि मेरे पिता अभी मेरी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप लोग खुद हमारे लिए रिश्ता लेकर गए थे और इसीलिए जल्दी जल्दी में मेरे पिता कुछ दे नहीं पाए। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वैसे ये ताने मेघा को हर गलती पर सुनने पड़ते थे। एक दिन मेघा ने अपने पति नकुल से कहा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, मुझे बाहर काम करने दो, मैं भी कोई नौकरी करना चाहती हूँ। नकुल तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि पहले मुझे पिताजी और माताजी से बात करने दो। मेघा ने कहा चलो ठीक है। जब अगली सुबह नकुल ने अपने पिता से मेघा के बारे में बोला तो पिताजी ने नकुल को डांटा और कहा कि अब ये दिन आ गए कि पत्नी के कमाए हुए पैसे इकट्ठा करोगे, क्या तुम इतने पैसे नहीं कमा पाते कि अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा कर सको। उसने पिताजी को समझाने की कोशिश की कि वो पढ़ी लिखी है और वो कुछ करना चाहती है। पिता ने नकुल को डांटा और डांटते हुए कहा कि हमारे घर की परंपरा यही है कि हमारे घर की महिलाएं घर से बाहर कदम नहीं निकालती, अगर कहीं जाना हो तो पति या परिवार की किसी व्यक्ति के साथ ही जाएंगी। हमारे घर की ये परंपरा है कि यहाँ पर सूट नहीं साड़ी पहनना होता है। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि हमारे घर की औरतें बाहर जाकर काम नहीं करती और ना ही कर सकती हैं। नकुल चुप हो गया। वो माँ के पास गया और सारी बातें माँ को बताया। माँ ने भी बिल्कुल यही बोला कि जो तुम्हारी दादी ने किया वही देखकर मैं करती चली आई और अब यही सब तुम्हारी पत्नी को भी करना होगा। नकुल ने पूरी कोशिश की कि मेघा की ख्वाहिशों को वो पूरा करे, मेघा जो करना चाहती है वो करे, लेकिन उसके माँ बाप ने

0: नाम देकर आगे भी जारी रखना चाहते हैं। मेघा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेघा की सास उस पर चिल्लाई और उसे बुरा भला बोली। इसके बाद उसने नकुल से मेघा को उसके मायके छोड़ाने को कहा। नकुल माँ बाप को कुछ कह नहीं पा रहा था और वो जैसा कह रहे थे वैसा करता जा रहा था। चाहता तो वो भी था कि मेघा पढ़ी लिखी है और उसे अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है, वो जो चाहती है वो करे, लेकिन माँ बाप और समाज ये सब देखकर वो डर रहा था। माँ के कहने मुताबिक वो मेघा को उसके मायके छोड़ाया। जब मेघा अपने मायके चली गई तो बिना डरे उसने एक स्कूल में अध्यापिका के लिए इंटरव्यू दिया और उसमें सेलेक्ट हुई। वो स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाती थी। जब ये बात नकुल और उसके माँ बाप को पता चली तो नकुल के माँ बाप ने मेघा को ससुराल बुलाने से साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि उसने हमारी इज्जत पूरे समाज में उछाल दी है। अब बात इतनी बढ़ गई कि उसकी सास ससुर ने तलाक के कागज भी मेघा को भेज दिए। मेघा चूंकि पढ़ी लिखी थी उसने तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर नहीं किए। तलाक का कागज लेकर वो पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस से पूरी बात बताई। पुलिस ने मेघा की पूरी मदद की क्योंकि मेघा चाहती थी कि उसकी सास ससुर को कोई ऐसा आदमी समझाए जिसकी बात उन्हें समझ आ जाए। उसने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की कि उन्हें कोई सजा ना दे बल्कि उन्हें समझाने की कोशिश करे। पुलिस वालों ने उन्हें समझाया और इस बात की धमकी भी दी कि अगर मेघा को किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो आप लोगों को सजा हो सकती है। और इस डर से मेघा की सास ससुर संभल गए और मेघा को पूरी आजादी मिल गई।
1: हिंसा करने वाला कोई भी हो सकता है, वो चाहे आपका पति हो, बेटा हो, बहू हो या सास हो। हम आए दिन खबरों में मौत की कहानियाँ पढ़ते रहते हैं जिसमें अलग अलग तरह से महिलाओं के मौत की खबर होती है, इसलिए समझदार बने और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं।
2: आज के इस दौर में भी महिलाओं पर अत्याचार होते रहते हैं जिसे महिलाएं नजरअंदाज करती हैं और सहती रहती हैं, पर उनकी ये सहनशीलता उनके लिए ही हानिकारक साबित होती है। जब आए दिन हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती है जिसमें किसी की हत्या हो गई, किसी ने सुसाइड कर लिया या फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं, तो आज ही हिंसा के खिलाफ आवाज उठाइए।
3: अत्याचार बहुत हुआ देवी,
2: तुम अब सहना छोड़ दो,
3: तुम में हुनर बहुत है,
2: तुम खुद को कमजोर कहना छोड़ दो।
3: और यही अपील स्मार्ट इंजियो और रेडियो प्रज्ञा आपसे कर रहा है।
0: वैसे ये कहानी तो थी मेघा की, लेकिन अभी भी हमारे समाज में मेघा की तरह ही बहुत सारी और भी महिलाएं हैं जिनके साथ आए दिन कोई ना कोई हिंसा होता ही रहता है।
1: हिंसा शब्द सुनते ही हमारे मन में कई तरह के ख्याल आते हैं। हिंसा का शिकार कोई भी हो सकता है, वो चाहे किसी भी वर्ग का पुरुष हो या स्त्री हो।
0: तो अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई भी हिंसा हो रहा है तो वन स्टॉप सेंटर या महिला थाना, महिला एवं बाल विकास अधिकारी या फिर महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 यानी 1090 या 112 की मदद लेकर आप इस तरह की हिंसा को रोक सकती हैं। क्योंकि अगर आप सुनेंगी नहीं, समझेंगी नहीं, तो अपनी चुप्पी को तोड़कर कभी भी आप हिंसा को नो नहीं बोल पाएंगी। इसलिए जरूरी है सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो, बोलो हिंसा को नो।
1: अगर आपके साथ हुई हिंसा का कोई भी सबूत आपके पास है तो उसे भी आप पुलिस से जरूर साझा करें। घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एक कानून बनाया गया है जिसके तहत आप अपने साथ हो रहे हिंसा की शिकायत कर सकती हैं। ये अधिनियम घर में मौजूद महिलाओं जैसे पत्नी या फिर साथ रह रहे जोड़ीदार, बहनों, माताओं, बेटियों, पति या अन्य पुरुष रिश्तेदारों से रक्षा करता है। इस अधिनियम के तहत दुर्व्यवहार करने वाले को कोई दंड या जुर्माना नहीं लगाया जाता, लेकिन अदालत द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन करने वाले को दंडित जरूर किया जा सकता है। औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद बागवान है इस कायनात की। हमें हिंसा को सहकर उसे बढ़ाना नहीं है, बल्कि हमें हिंसा पर रोक लगाना है और ये कहना है कि सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो, बोलो हिंसा को नो।
0: और हम महिलाओं को अपना अधिकार समझने की जरूरत है कि हमारा अधिकार क्या है। अपने अधिकार, अपने हक किसी को छीनने ना दें। अपने अधिकार की लड़ाई आप खुद लड़ें। और कहीं आपको ऐसा लगता है

0: कि आपको किसी की मदद की आवश्यकता है तो आप महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 या 112 यानी 112 पर कॉल करके मदद भी ले सकती है, जहां आपके परिचय को गोपनीय रखा जाता है और आपकी मदद भी पूरी तरीके से की जाती है। और अगर आपको मेघा की ये स्टोरी पसंद आई है और अगर आपको भी ये लगता है कि इस कहानी से आप दूसरों की या खुद की मदद कर सकती हैं, तो जरूर करें।
1: उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई कहानी के माध्यम से ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी।
0: ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा था हिंसा कोनो। ये कहानी यही समाप्त होती है, तो दीजिए हमें जाने की इजाज़त। मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक इंतजार हमारा। सुनते रहिए आप
2: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज़, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए हैं विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
3: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800 111 6666 पर संपर्क करें।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स

0: शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सोनू शारदा 90.8 FM।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: लगती है।
1: ओले ओले ओले, बहुत शोला। हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग की दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
3: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनुशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात

0: के 8 बजे तक।
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखे, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नवजात शिशु, लड़की हो या लड़का, उसकी एक समान देखभाल करें।
2: नवजात लड़की या लड़के में खतरे के लक्षण दिखते ही उसे बिना समय गवाए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या SNCU में ले जाएं।
1: एक वर्ष तक के सभी नवजात शिशु को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या हो तो सरकारी अस्पताल में उपचार, दवाएं, सभी जांचें तथा जरूरत पड़ने पर रक्त, ये सभी सेवाएं निःशुल्क दी जाती हैं।
2: और 102 एम्बुलेंस सेवा घर से अस्पताल और अस्पताल से वापस घर तक निःशुल्क पहुंचाएगी।
1: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएगी खुशियां बेमिसाल।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
1: शिशु की सही देखभाल से
2: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

धरती मेरी धरती प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की कड़ी। मिलकर काम करना हमें प्रकृति से सीखना होगा और समझ बूझ जीवन को कब एक नए क्षितिज की ओर ले जाती है ये बताएगी हमारी आज की कड़ी, जिसका शीर्षक है साथी

0: ये मानव अभी तक नहीं लौटा। लगा होगा अपने दोस्तों के बीच में अपनी शेखी बगा रहा होगा। पता नहीं क्या करता है लड़का।
1: हाँ मम्मी, जब से अपना मानव फुटबॉल का मैच जीता है उसके पांव जमीन पर पड़ते ही नहीं है। रात दिन कभी फुटबॉल की तरह जमीन पर तो कभी हवा में रहता है।
0: उसमें ये अकड़ तो मैं भी देख रही हूँ। कहाँ हमने ये चाहा था कि वो मिलजुल कर रहना सीखे, और कहाँ वो अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं।
1: हाँ मम्मी, अब तो वो अपना होमवर्क भी दूसरे बच्चों से करा लेता है। सभी उसे फुटबॉल का बड़ा खिलाड़ी मानने लगे हैं।
2: क्या हुआ भाई, सुबह सुबह माँ बेटी में ये क्या कानाफूसी चल रही है?
0: कुछ भी नहीं, बस थोड़ा मानव की चिंता सता रही है।
2: क्यों?
0: अपने काम दूसरों पर टालने लगा है वो।
1: हाँ पापा, उसके दोस्त भी पता नहीं उसे क्या समझते हैं। हर समय उसके आगे पीछे रहते हैं, हर काम को तैयार।
2: अरे अभी अभी फुटबॉल मैच जिताया है ना मानव ने, इसीलिए सबका हीरो बना हुआ है। धीरे धीरे फिर धरती पर आ जाएगा।
1: पर पापा, वो अपने सारे काम, यहाँ तक कि होमवर्क भी अपने दोस्तों से कराता है।
2: अब चलो, अभी डॉक्टर इस्लाम और उनके मित्र डॉक्टर नरेश सिरोही आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर इस्लाम तो बच्चों को समझाने में माहिर हैं।
0: हाँ, ये तो है। कहाँ अपना मानव हमेशा उनकी डांट से डरता था, और अब कहाँ उनकी हर बात सुनने समझने को तैयार रहता है।
1: अरे मम्मी, वो सब तो इसलिए क्योंकि वो इन सब ज्ञान भरी बातों को अपने दोस्तों में सुनाकर डींगे मारता है।
2: ओह, लेकिन सृष्टि बेटा, ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है, और ये तो अच्छी बात है। परंतु हाँ, अगर घमंड आ जाए तो हर ज्ञान व्यर्थ है।
0: हाँ, यही घमंड तो आ गया है आपके सपूत में।
2: अच्छा,
0: ज्ञान का तो पता नहीं उसे कितना मिला है, पर घमंड कूट कूट के भरा है।
2: अच्छा?
0: अब नहीं कहोगे जैसा पिता वैसा पुत्र।
2: अब हाँ, इस समय क्यों बोलूं मैं। चलो देखते हैं क्या होता है। वैसे ये विवेक सुबह सुबह कहाँ चला गया, और ये मानव है कहाँ पे?
1: विवेक भैया, वो तो कोई लाइब्रेरी की किताब लौटाने गए हैं, अभी आ जाएंगे। और मानव मोहल्ले के लड़कों को फुटबॉल की ट्रेनिंग दे रहा है। अब मानव साहब कब आएंगे ये तो मुझे पता नहीं।
0: अरे लगता है विवेक आ गया।
2: हाँ, देखो देखो। हाँ,
3: अरे इस्लाम भाई साहब।
4: ये हमारे मित्र हैं डॉक्टर नरेश सिरोही।
1: नमस्ते अंकल,
0: आप भी अंदर आइए भाई साहब।
2: आओ बैठो भाई, बैठो। अब कैसे हो? बैठो बैठो ना।
0: अरे विवेक भी आ गया।
5: नमस्ते अंकल।
4: नमस्ते नमस्ते। और विवेक, सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो भाई?
5: लाइब्रेरी गया था कुछ किताबें लौटानी थी।
4: विवेक, सृष्टि, ये नरेश अंकल हैं।
1: नमस्ते अंकल।
6: नमस्ते नमस्ते।
4: ये महासागर विज्ञानी हैं, पता है, समुद्र की चौड़ाई गहराई नापते रहते हैं।
6: उड़ा लीजिए, आप भी मजाक उड़ा लो प्रोफेसर इस्लाम पर, हमारे बगैर काम नहीं चलने वाला।
2: ये बात तो सही है।
0: और ये बात तो मैं भी कह सकती हूँ कि मेरे बिना भी काम नहीं चलने वाला। मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ।
2: ये अच्छी बात है भाई।
4: विवेक, तुम्हारा छोटा भाई नहीं दिख रहा, क्या अभी तक सो रहा है वो? है
1: कहाँ अंकल, जब से फुटबॉल मैच जीत कर आया है तब से बस दिमाग ही फुटबॉल जैसा बन गया है। सुबह शाम बस फुटबॉल प्रैक्टिस बस।
4: अरे वाह, तो अपना मानव पिंटू की टीम से फुटबॉल मैच जीत गया भाई। हाँ। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है।
2: हाँ इस्लाम भाई, बढ़िया तो है, पर पता नहीं उसमें इतना घमंड आ गया है कि बस पूछो नहीं। और ऊपर से उसके दोस्त भी उसे इतना भाव देते हैं जैसे कहीं का राष्ट्रपति हो।
5: हाँ पापा, कल मैंने देखा कि जब मानव स्कूल से आ रहा था तो उसका दोस्त हैप्पी है ना, उसका बैग और बोतल पकड़कर पीछे पीछे चल रहा था।
2: हाँ, बात
1: पीछे, पीछे।
5: और मैंने पूछा तो मानव नहीं हैप्पी कहने लगा कि विवेक भैया रहने दो, मेरी गलती से दो गोल हुए, अब इतनी सजा तो सहनी पड़ेगी। अब बताओ पापा।
2: वो तो बेचारा हैप्पी की जगह दुखी हो गया होगा।
4: तो मानव जी अब सजा भी देने लग गए। चलिए आने दीजिए, बात करते हैं उनसे।
2: हाँ, सही रहेगा।
1: ओह, लगता है आ गए हमारे मोहल्ले के पेले।
7: ए हैप्पी, चल फुटबॉल अंदर रख। अरे अंकल आप, नमस्ते।
4: नमस्ते मानव भाई, तुम्हें पिंटू की टीम पर मिली जीत मुबारक हो।
7: थैंक यू अंकल। अंकल ये फुटबॉल है ना, ये पिंटू की है जो हमें जीतने पर मिली है।
8: और अंकल अब पिंटू फुटबॉल भी नहीं खेलता, बस चुपचाप बैठकर हमें खेलता देखता रहता है।
4: अच्छा बच्चों, ये नरेश अंकल हैं, ये समुद्र के विशेषज्ञ हैं, इनसे तुम अपने महासागरों सागरों से संबंधित सभी सवाल पूछ सकते हो।
8: अरे वाह अंकल, हमें तो महासागरों पर होमवर्क भी मिला है। मानव तेरा होमवर्क भी मैं ही कर लूंगा, ठीक है?
7: ओ ठीक है हैप्पी। अंकल, हमें पिछली बार आपने महासागर, भूमि और वायुमंडल का आपसी तालमेल तो बताया था, आज तो आप महासागरों में कैसे गतिविधियां होती हैं ये बताने वाले थे।
4: हाँ, आज तो यही बताना है, फिर अगली बार वायुमंडल को ले लेंगे। अच्छा, तुम्हें याद है ना कि गायर यानी वृत्ताकार गति क्या होती है?
7: हाँ अंकल, सागरों महासागरों में पानी बड़े बड़े लूप यानी पाश के रूप में प्रवाहित होता है, इन्हें ही गायर कहते हैं।
6: वाह वाह, भाई मानव तो बहुत कुछ जानता है आपका। हा?
8: हाँ अंकल, मानव को बहुत कुछ पता है। हा? ये तो बड़ा होशियार है।
6: अरे भाई वाह मानव।
4: हा? अच्छा मानव, क्या तुम जानते हो इन गायर के घूमने की दिशा उत्तरी भाग या दक्षिणी भाग में क्या होती है?
7: अंकल ये तो नहीं पता।
8: तेनू नहीं पता?
5: मानव, भूमध्य रेखा से ऊपर यानी उत्तरी भाग में ये गायर घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं यानी क्लॉकवाइज, जबकि भूमध्य रेखा के नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में ये गायर घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमते हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज। समझे?
1: कुछ समझे मानव?
7: हाँ, पर ऐसा क्यों होता है?
6: अब भाई विवेक को तो काफी जानकारी है। हाँ तो ऐसा क्यों होता है ये मैं बताता हूँ। असल में धरती की सतह पर हवाओं की भी एक खास हलचल रहती है। महासागरों का प्रवाह उनकी सतह पर चलने वाली हवाओं के कारण बनता है, जिससे पूरे विश्व में ताप का संचरण होता है।
7: ताप का संचरण यानी?
5: यानी ताप का पूरी पृथ्वी पर वितरण। हाँ। जिससे तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव ना आने पाए, तभी तो धरती पर जीवन संभव हुआ।
4: वाह विवेक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मानव, जैसा तुम्हें पहले बताया है कि हवा और पानी की ये गतिविधि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर होती है, तो ये शक्तिशाली महासागरों का प्रवाह इन तेज हवाओं की मदद से ध्रुवों की ओर चलता है। परंतु तुम जानते हो कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है, जानते हो कि नहीं?
7: हाँ हाँ हाँ अंकल पता है।
6: हाँ तो बस इसी धुरी पर घूमने की वजह से सारे वायुमंडल चक्र और महासागरीय चक्रों में एक अनोखापन आता है, और भूमध्य रेखा के ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में महासागरों के जल का प्रवाह दाई ओर होता है यानी घड़ी की सुई की दिशा में।
4: दक्षिणी गोलार्ध में धरती के अपनी धुरी पर घूमने के कारण महासागरों का प्रवाह बाई ओर होता है यानी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा।
6: हाँ। हाँ?
4: हालांकि गोलार्ध को छोटे से तटीय क्षेत्र में थोड़ा बहुत फर्क मिलता है, परंतु सामान्यतः यही दिशा रहती है।
5: अंकल, जब यही प्रवाह किसी महाद्वीप के तटीय इलाकों से टकराता है तो ये बाउंड्री करंट यानी सीमा रेखा प्रवाह बन जाता है ना?
6: बिल्कुल ठीक विवेक। इसके अलावा अलग अलग महासागरों के जल की भिन्नता से भी महासागरीय फ्रंट बनते हैं। ये रंग में भिन्नता, तापमान व लवणता में फर्क के द्वारा पहचाने जाते हैं।
5: अच्छा,
6: पूर्वी सीमा पर इन प्रवाहों की गति कम होती है और पश्चिमी सीमा पर ये प्रवाह तेज होते हैं।
4: और ये सब महासागर, वायुमंडल और भूमि के परस्पर संबंधों के कारण होता है। ये बाउंड्री प्रवाह भूमध्य क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों तक ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सूर्य प्रकाश,
2: हाँ बिल्कुल सही कहा। और मैं भी जोड़ू इसमें कुछ?
4: मैं चाह रहा था कि तुम चुपचाप बैठे हो, कुछ बोल नहीं रहे।
2: भाई देखो, उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम जो उत्तरी दिशा की ओर जाने वाला प्रवाह है, ठंडे प्रदेशों की ओर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा का हस्तांतरण कर देता है। जब उत्तरी गोलार्ध से जो पानी दक्षिण की ओर आता है उसे हम देख सकते हैं कि वो ठंडा पानी है जो भूमध्य रेखा पर दोबारा गर्म होने के लिए आ रहा है, और ये महासागरीय संचरण का एक छोटा जया नमूना है।
1: यानी ये तो एक तरह से समुद्र मंथन हुआ जिसके कारण ताप का समान वितरण होता रहता है।
5: बिल्कुल ठीक, और ऐसा ही कुछ वायुमंडल में होता है।
4: और इसी समुद्र और वायुमंडल के मंथन से समुद्र और पृथ्वी पर जीवन लायक तापमान बना रहता है।
2: हाँ, बिल्कुल सही।
1: और ये तापमान बना रहा है इसलिए चाय लीजिए बिस्किट के साथ।
2: वाह भाई लाओ, बहुत बढ़िया भाई, भूख भी लग रही थी है ना भाई। लीजिए लीजिए नरेश भाई, आप भी लीजिए। हाँ, लो ना भाई।
4: तो मानव, इतनी सारी बातें हो रही हैं, कुछ समझ रहे हो?
7: हाँ अंकल, कुछ कुछ
2: कुछ।
8: ये अंकल, क्या समुद्र में नदियाँ भी होती
7: है? अरे समुद्र में नदियाँ? अरे हैप्पी, सारी नदियाँ तो समुद्र में ही गिरती हैं, समुद्र में नदियाँ नहीं होती। पागल,
8: पर मेरे चाचा जी ने बताया था।
7: अरे गलत बता दिया होगा।
4: पर मानव, तुम्हें कैसे पता कि ये गलत है?
7: मतलब
6: ये कि एक तो सारी नदियां समुद्र में नहीं खत्म होती और दूसरा समुद्र में भी नदियां होती हैं।
7: पर अंकल नदियां तो समुद्र में ही गिरती हैं।
4: हाँ पर सारी नहीं, कुछ नदियां हैं जो सागरों तक पहुंचने से पहले ही सूख जाती हैं। जैसे उत्तरी अफ्रीका की तासिली पहाड़ियों से बहने वाली नदियां सहारा रेगिस्तान की तपती गर्मी और शुष्क जलवायु में सूख जाती हैं, समुद्र तक पहुंच नहीं पाती।
1: अंकल आजकल तो बड़े बांध और सिंचाई नहरों के कारण भी कई बड़ी बड़ी नदियां भी सागर से नहीं मिल पाती है ना।
6: बिल्कुल ठीक है, शाबाश, पर सब मानव के दखल से ही हो रहा है।
7: क्या हो रहा है मेरे दखल से? मैंने क्या किया? नदियों का सागरों तक पहुंचने से पहले सूखना या इस प्रक्रिया का मेरे पूछने पर विस्तार से समझाना, क्या हो रहा है मेरे दखल देने से?
1: अरे मानव, दोनों हो रहा है। मानव के कारण पर्यावरण का नाश और मानव के ही कारण ज्ञान भरी बातें।
8: अंकल तो समुद्र के अंदर नदियां होती है ना?
4: हाँ हैप्पी बेटे, होती है। अरे बेटे, हम नदियों को भूमि पर बहने वाले पानी का प्रवाह समझते हैं, पर हम जब इन समुद्रों में बहने वाली नदियों की बात कर रहे हैं तो असल में हम इन समुद्रों पर बहने वाली हवाओं के कारण बने प्रवाहों की बात कर रहे होते हैं। असल में बेटे, इन्हीं को तो ओशन करंट यानी महासागरीय प्रवाह कहते हैं, जो पूरी पृथ्वी के महासागरों सागरों में गतिमान रहते हैं। ये धरती को गर्म और ठंडा करने में मदद करते हैं।
2: हाँ, और सबसे बड़ी सागर में बहने वाली नदी या प्रवाह कहें तो वो एंटार्क्टिका के आसपास गतिशील वेस्ट विंड ड्रिफ्ट यानी पश्चिमी वायु बहाव है। पता है इसमें दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक अमेज़न नदी से भी 2000 गुना ज्यादा पानी बहता है।
8: ओए मानव, तेरे पापा को तो बहुत पता है। इतनी बड़ी नदी समुद्र में? देखा मानव, मैं ठीक कह रहा था ना?
7: ठीक है। हाँ अंकल, आप कह रहे थे कि महासागरों में गतिविधियां सघनता के कारण होती हैं।
4: हाँ मानव, लेकिन सिर्फ सघनता के कारण ही मूवमेंट नहीं होते। अगर मोटे तौर पर देखें तो महासागरीय जल में होने वाली गतिविधियों के लिए दो मुख्य कारक हैं। पहला, महासागर की सतह पर बहने वाली हवाओं से तालमेल के कारण, और दूसरा महासागर के अंदर ही सघनता में भिन्नता।
6: हाँ, तो बच्चों, इन कारकों या कहें ताकतों के परिणाम स्वरूप होने वाली गतिविधियां महासागरों के तल से प्रभावित होकर मुड़ जाती हैं, या फिर धरती के अपनी धुरी पर घूमने के कारण इनमें घुमाव आ जाता है।
4: अच्छा,
1: और धरती के अपनी धुरी पर घूमने के कारण आने वाले इस डिप्लेक्शन यानी दिशा परिवर्तन को कोरियोलिस प्रभाव या बल कहते हैं, और ये नाम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीजी कोरियोलिस के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इस बल की खोज की थी।
4: अरे वाह सृष्टि बेटा, शाबाश, तुम्हें ये सब कैसे पता चला?
2: मैंने बताया होगा।
1: नहीं पापा, विवेक भैया ने बताया।
2: उसे भी मैंने ही बताया होगा।
4: अरे मानव, जब तुम्हारे पास तुम्हारे विवेक भैया हैं, तो तुम्हें हमारी क्या जरूरत है भाई? शाबाश शाबाश, बहुत
5: थैंक यू अंकल। पर ये मानव मेरी अहमियत समझता कहाँ है? आजकल तो बस अपनी ही धुन में खोया रहता है।
7: नहीं नहीं विवेक भैया, मैं आपसे इतने सवाल पूछता तो हूँ।
1: अरे वो तो तब पूछता है जब तुझे विवेक भैया को पटाना होता है।
6: हाँ तो भाई, इस तरह से चार मुख्य बातें हैं जो महासागरीय जल की गतिविधियों को प्रभावित करती हैं।
5: अच्छा,
6: पहली है हवा द्वारा चालित प्रवाह, जो इस पर निर्भर करता है कि वर्तमान में वायु प्रणाली क्या है। इसमें ईस्टर्ली प्रवाह शामिल है, जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर होता है और जो व्यापारिक हवाओं से भी संबंधित है।
7: अंकल, ये ईस्टर्ली और व्यापारिक हवाएं क्या है?
4: बताएंगे मानव, ये भी बताएंगे कि वेस्टर्ली भी क्या है, परंतु ये वायुमंडलीय संचरण के साथ बताएंगे। अभी महासागरों के जल संचरण को थोड़ा समझो, समझे?
6: हाँ मानव, महासागरों की सतह पर चलने वाली हवाओं में थोड़ा सा वर्टिकल मूवमेंट यानी सीधी गतिविधि भी होती है, जो करीब 10 मीटर की गहराई तक अपना प्रभाव छोड़ती है, और अपने साथ साथ ये मूवमेंट सतह के ताप और गैसों को इस गहराई यानी 10 मीटर तक अच्छी तरह मिला देता है। इस प्रकार गहराई तक में हवा द्वारा किए जाने वाले संचरण को लैंगम्यूर संचरण कहते हैं।
2: हाँ, अब अलबत्ता महासागरीय जल के प्रवाह का कारण है सघनता में भिन्नता, जो जल के तापमान और लवणता द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे उच्च तापमान और निम्न लवणता, मतलब
1: कम सघनता और निम्न तापमान, और अत्यधिक लवणता मतलब
8: अत्यधिक सघनता।
6: तो अब अगला कारक है महासागरों के तल का आकार। इससे जल की गतिविधि प्रभावित होती है। ये सतही प्रवाह को सीमा रेखा प्रवाह में बांट देता है और साथ ही साथ गहरे पानी के संचरण को भी तय करता है।
4: और चौथा कारक है धरती का उसकी धुरी पर घूमना।
1: हाँ अंकल, ये तो हम बिल्कुल समझ गए हैं।
6: तो अब इसके अलावा और भी कई कारक हैं, पर अभी तुम यही समझो।
4: ठीक कहा नरेश
8: अंकल। मेरे चाचा कहते हैं कि समुद्र के अंदर जो प्रवाह होता है वो बहुत खतरनाक होता है।
7: अरे जब पानी के अंदर है तो खतरनाक कैसे होगा।
4: अरे चुप मादा चुप। ठीक कहा हैप्पी बेटे, बहुत बढ़िया। अंडर वाटर करंट।
2: इस्लाम तुम इसको डरा देते हो।
4: अरे बात ही ऐसी बोलता है। हाँ तो मैं बता रहा था अंडर वाटर करंट यानी अंतरजलीय प्रवाह बहुत खतरनाक होता है। और मैं आप सबको बताऊं कि हर वर्ष इससे कई मौतें होती हैं। सागर की सतह का पानी शांत नजर आता है परंतु शक्तिशाली अंतरजलीय प्रवाह तैराकों को नीचे खींच लेता है या तट से दूर ले जाता है जिससे तैराक थककर डूब भी सकते हैं।
5: भाई हैप्पी तुम तो बड़े होशियार हो और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने चाचा जी से सवाल भी करते हो। शाबाश।
8: थैंक यू विवेक पाजी।
6: पर मानव तुम्हें कुछ समझ आया कि नहीं?
7: आया अंकल, बिल्कुल समझ आया।
4: तो मानव ये पता लगा कि सारे महासागरीय वायुमंडलीय भूमि के चक्र संचरण एक दूसरे पर निर्भर होते हुए भी अपना अपना काम अपने आप और पूरी निष्ठा से करते हैं, समझे?
1: हाँ, अपना काम दूसरों पर नहीं डालते।
6: हाँ, जैसे भूमि से नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी महासागरों सागर को नमकीन बनाती है जिससे महासागरों में सघनता की भिन्नता आती है और संचरण होता है।
5: हाँ, और भूमि के सुपकार पर महासागर फूलते नहीं बल्कि बारिश की फुहार बनकर भूमि पर बरसते हैं, उसे हरा भरा कर देते हैं।
1: यानी किसी से कुछ छीना नहीं, ना लिया ना दिया, बस अपना अपना फर्ज निभाया। अपने और सबके फायदे के लिए और अस्तित्व के लिए। समझा मानव?
7: हाँ, हाँ समझ गया। हैप्पी मैं अपना होमवर्क खुद कर लूंगा और अगर तुझे कुछ पूछना हो तो मुझे बता देना, ठीक है?
8: ठीक है मानव, ठीक है।
2: अरे वाह मानव तो सच में समझ गया। अब खैर चलो भाई, अब हाथ मुंह धोकर खाना खा लेते हैं। अब इस्लाम भाई, डॉक्टर नरेश आप भी आइए ना, खाना खा लेते हैं भाई, बहुत भूख लग रही
1: है। चलो चलो विवेक, सृष्टि चलो हाथ धोकर खाना खाओ।
8: हाँ मम्मी, हाँ मम्मी।
2: अरे अरे, अरे ये मानव कहाँ भागा जा रहा है? मानव, ओ मानव।
7: पापा आप लोग खाना खाइए, मैं पिंटू को उसकी फुटबॉल देकर आता हूँ।
1: क्या बात है,
4: मानवता अभी खत्म नहीं हुई
1: है।
9: हम जानते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। सूक्ष्म जीव, वनस्पतियां वो विभिन्न जीव जंतु यहां जीवन के विविध रूपों में समन्वय बनाए हुए हैं जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। जीवन का हर एक रूप या कहें कि जीवों की एक प्रजाति अपने अस्तित्व के लिए दूसरी प्रजाति पर निर्भर होती है। पृथ्वी पर जीवन के विविध रूपों की जब हम बात करते हैं तो हम मानव प्रजाति की भी बात करते हैं। यदि हम अपने पर्यावरण को समझना और उसे सुरक्षित बनाए रखना चाहें तो हमें पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के विभिन्न रूपों की परस्पर निर्भरता और जीवन के लिए हवा, पानी व मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझना होगा। पृथ्वी पर जीवन लाखों करोड़ों वर्षों के दौरान पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पनपा है। जीवों की वे प्रजातियां पृथ्वी पर रही है जिन्होंने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। ऐसे परिवर्तन भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, चक्रवात और इसी प्रकार के अन्य प्राकृतिक कारणों से भी हुए होंगे। अक्सर ये परिवर्तन उन प्रजातियों द्वारा लाए गए थे जो विकास की सीढ़ी पर ऊंचे पायदान पर बैठी हैं। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं और विकास के लिए पर्यावरण पर नियंत्रण करने की कोशिश की और यही मानव प्रजाति ने अपने नाजुक संतुलन पर टीके पृथ्वी ग्रह पर भी किया। हमें विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति हम सदियों से परंपरागत स्वरूप से जलावन लकड़ी, कोयला व पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त करते आ रहे हैं। आज इस बात को सभी मानते हैं कि कोयले के दहन जैसी मानवीय गतिविधियों से ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड व दूसरी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी ग्रह का तापमान बढ़ने लगा है और पृथ्वी दिनों दिन गर्माती जा रही है। आज हमारे ग्रह पर कई खतरे मंडरा रहे हैं, जो मुख्यतः बदलती जलवायु, बिगड़ता पर्यावरण, प्रजातियों का तेजी से सफाया होना, शुद्ध जल की घटती उपलब्धता, नदियों का समुद्र में पहुंचने से पहले ही सूख जाना, बंजर होती उपजाऊ जमीन, ऊर्जा स्रोतों की बिगड़ती हालत, बढ़ती बीमारियां, तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उसका पेट भरना, ये सब समस्याएं हैं। इन सब की वजह से आज मानव का अस्तित्व ही खतरे में आ पड़ा है। आज हम चादर से अधिक पैर पसार रहे हैं। बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों से अधिक की आवश्यकता है। मानवीय आवश्यकताओं की मांग पृथ्वी की क्षमता से परे है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक प्राकृतिक साधनों का दोहन कर रहे हैं, और जिससे आज विकासशील देशों के अरबों लोग संकटों के साय में जी रहे हैं। इस दिशा में विश्व का ध्यान आकर्षित करने और यह बताने के लिए कि पर्यावरण वह है जहां हम रहते हैं, और विकास को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने व समझने की कोशिश करने के लिए कि सभी के सहयोग से हम पृथ्वी ग्रह पर जीवन और जैव विविधता को बनाए रखेंगे, लोगों को चुनौतियों के साथ संभावित समाधानों के प्रति जागरूक करते हुए पृथ्वी ग्रह को संभावित विपदों से बचाना भी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विज्ञान प्रसार 19 भारतीय भाषाओं में 52 कड़ियों वाला धारावाहिक धरती मेरी धरती विज्ञान प्रसार भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संस्था है, जिसका उद्देश्य विज्ञान संचार को बढ़ावा देने के साथ लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता का प्रसार करना है। इस धारावाहिक के माध्यम से पृथ्वी ग्रह के विभिन्न पहलुओं जैसे पृथ्वी के निर्माण, स्थल मंडल,

महासागरों, वायुमंडल, जैवमंडल और जैव विविधता पर हम बात करेंगे। मैं यह आशा करता हूं कि धरती मेरी धरती धारावाहिक नई पीढ़ी को पूरे ब्रह्मांड में जीवन को पनाह देने वाले इस पृथ्वी ग्रह को बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है, इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: Now listen girls, please understand, first things first, I only want a shirt.

लिए नहीं बचा पाएंगे अपने आप को।

0: नहीं, अब मैं जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।
1: तीन तारा, मच्छर आ रहे हैं, क्या तुम सब हो तैयार?

0: गुडबाय मिस मच्छर।
1: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
0: तब तक रहो तारा की तरह तैयार। बाय बाय।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सॉरी नमी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
1: इट्स ओवर, अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती।

0: दुष्यंत, मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
1: सो व्हाट, मैं काम में बिजी था यार, तुम मुझसे मिलना चाहती थी, मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो।
0: यू नो शेम, इट रियली हर्ट्स। एनीवे,

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.
7: Akkadi pakkadi dikka dikkadi dikkadi dikkadi dikka dikkadi dikka dikkadi

0: ऑडियो ओवर गो
1: सोनू शारदा।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सोनू शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा या यूं कहें कि पिचक जाएगा या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
3: हाय, मैं हूं रणवीर, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
4: आ जा प्यार की होड़ी ले।
5: दिल बोले तो हार्ट हार्ट।
6: हवा यार, सौदा सौदा।
5: ओहो,
4: दोनों डील कर सी
5: टाइट, टाइट, वेरी टाइट।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.
7: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
2: माँ के दूध के साथ जरूरी है बच्चे के लिए पौष्टिक आहार।
1: केवल माँ का दूध
2: नहीं बना पाएगा बच्चे को मजबूत।
1: अतिरिक्त पोषण की जरूरत,
2: दूध के साथ ओपी आहार की अहमियत।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की, मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छान कर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूं। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को

0: टीबी मुक्त बनाए।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.
3: तुम्हारी सरकारी नौकरी पक्की हो गई है।
4: अरे मम्मी, सरकारी नौकरी लग गई।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको

0: सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट विच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
4: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दोस्तों, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, I'm Ranvijay. आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.
5: छेड़ना अच्छा लगता
6: है। और क्या अच्छा लगता है?
5: ये जो बातों ही बातों में मेरी आंखों के डीएम में स्लाइडिंग करती है ना, अच्छा लगता है।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स हैं, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University. Zindagi, music produced and arranged by Ruhan Malik, lyrics by Saqib Nabi, only on Surushada 90.8 FM. Zindagi.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: आई मैं रन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर एक खास संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज न करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएंगे और सही उपचार लेंगे तो यकीन मानिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: ताज़ा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
2: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
1: क्या है राज?
2: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ। दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
3: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक स्वास्थ्य जन जागरूकता मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कही, ताकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो सब जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और आप सभी जानते हैं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बीमारियां भी होती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर आर के शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, तो किस तरह से लोग अपना इस मौसम में ध्यान रखें?
2: इस मौसम में सबसे पहले ये कि धूप में काम कम से कम करें, सुबह शाम ज़्यादा करें, धूप में सिर पर कपड़ा रख के चलें, पानी बोतल या साथ में इलेक्ट्रॉल ORS या जो भी चीज़ अवेलेबिलिटी हो, या घर से अपने एक छाछ, बेलपत्थर का जूस या जो भी जूस लेकर चल सकते हैं वो लेकर चलें साथ में, ताकि बीच में कहीं उसे पी सकें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्मी हो या मौसम खराब हो, जो काम करने वाले हैं उनको तो अपना काम करना ही है, जाना ही है।
2: काम बहुत जरूरी है, काम बिना तो कुछ नहीं है।
1: तो काम पर जो लोग जाते हैं, खास करके जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए?
2: उनको यही सिर पर कपड़ा रखें हर समय
1: जी।
2: दूसरा ये कि कम से कम जो है, मतलब ऐसे ही समझ लीजिए, देखें बहुत ज्यादा चिलचिलाती धूप है, 2 घंटे का टाइम होता है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस समय थोड़ा सा जो है कम काम करें या रेस्ट।
1: और
2: सुबह बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, शाम को भी देर तक काम कर सकते हैं, उस समय थोड़ा ठंड रहती है, पैर में जो है सब ज़्यादा परेशानी आती है।
1: तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो काम है उसको, जो मौसम ठंडा ठंडा होता है थोड़ा, तो उसी में निपटा दें, और जो धूप होती है
2: उसमें आराम करें,
1: उसमें आराम
2: की जगह मिल जाए। लेबर है तो अपना कहीं पेड़ है कुछ है या शेड है, कहीं भी किसी तरह की जगह है उनको वहाँ पर अपना।
1: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही कि धूप से गर्मी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अब ये जो मौसम होता है ना बीमारियां भी हो जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं इस मौसम में?
2: खास तौर से जो है आपको एक तो उल्टी दस्त आते हैं, दूसरा बाजार का खाना पीना कहीं खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली तो गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उससे लूज मोशन हो जाते हैं, तो बचाव करें। बाजार का खाना कम से कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है, और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो बहुत हल्का या कम खाएं।
1: तो जैसे आपने बताया कि दस्त की बीमारी हो जाती है, उल्टी की बीमारियां भी हो जाती हैं,
2: हीट स्ट्रोक हो जाता है, बुखार आ जाता है,
1: बुखार भी आ जाता है, अब बच्चों में जैसे डायरिया भी होता है, तो इसके क्या कुछ कारण हैं?
2: डायरिया का भी एक मेन कारण है धूप में, यदि घर में रहते तो नहीं होता है इतना, लेकिन बाहर के आना जाना रखते हैं औरतें हैं बच्चों को लेकर, कई रिश्तेदारी में आना जाना कर रही हैं और धूप में गर्मी में है, तो उनको उल्टी दस्त के ज़्यादा चांसेस है।
1: तो जिन बच्चों को मान लीजिए डायरिया हो गया है, कभी ऐसा देखा जाता है उल्टी भी है और उसको
2: लूज मोशन भी है,
1: तो किस तरह से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है?
2: सबसे पहले तो उनको यही है कि थोड़ा सा उसको कोई उल्टी के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टी जब तक नहीं रुकेगी दस्त वाली दवा भी नहीं पचेगी, तो सबसे पहले उसको उल्टी कंट्रोल करने के लिए लिक्विड आता है उल्टी के रोकने के लिए, उसके बाद ORS का पानी पिलाइए उसको, ORS का लिक्विड भी आता है रेडीमेड बना हुआ, और ORS का जो पैकेट घोल के बना सकते हैं। तीसरा फिर उसको दस्त की दवा दें, कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है, इन्फेक्शन नहीं है पेट में ज़्यादा तो खाली जो है दूध मोशन के लिए कोई टैबलेट वगैरह या लिक्विड में दे सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज में कोई रहते हैं, मान लीजिए रात में ये दिक्कत हो गई, अब वो डॉक्टर साहब के पास जा नहीं सकते उस दौरान, तो उस दौरान वो क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं?
2: घरेलू उपाय हैं, नमक चीनी का घोल ले सकते हैं, ORS तो लगभग गाँव आजकल सब जगह मिल जाता है, क्योंकि आशा आंगनबाड़ी के सबके पास में ORS रहता है, तो ORS का पानी तो पिला ही दें कम से कम, यदि और दवा भी नहीं मिलती है कोई, और दवा मिल जाए आप, क्योंकि अब तो स्टोर भी काफ़ी लगभग हर गांव में एक आध कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वहाँ से उल्टी की दवा तो ले ही सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप ORS की सिफारिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या चीज़ है ORS?
2: एक जीवन रक्षक घोल है
1: जी,
2: और खाली दस्त उल्टी के लिए नहीं है, ये किसी भी हीट स्ट्रोक में गर्मी के समय में, या आपको देख रहे हैं कि हमें थकान भी हो रही है कहीं पर, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी ORS का घोल जो होता है काम।
1: तो कहने का मतलब आपका यही हो गया कि अगर मान लीजिए कोई हमें बीमारी भी नहीं है गर्मी के मौसम वाली,
2: तब भी उसको ले सकते हैं,
1: तब भी हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है कि भाई हम अपने स्वस्थ रहें, तो किस तरह से उसकी दिनचर्या होनी चाहिए?
2: दिनचर्या तो यही है कि सुबह जल्दी उठे, कुछ एक्सरसाइज व्यायाम अपना करें, काम भी करें, लेकिन व्यायाम सबसे पहले है ताकि इससे इसमें फुर्ती आ जाए। दूसरा कम खाना और गम खाना, ये दोनों चीज साधन ऐसी है कि जिससे हमेशा स्वस्थ रहोगे, मन भी शांत रहेगा और शरीर भी ठीक रहेगा।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, जो कार्यक्रम चल रहा सेहत सही लाभ कही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: बहुत अच्छा है प्रोग्राम आपका ये, और इस चीज़ को जागरूकता के लिए जगह जगह इसको सुनाया जाए, बताया जाए, जो भी अच्छे आपके जो कहीं पे इस तरह की क्लिप मिलती है तो आपको जो बाहर उसको पब्लिक में सुनाया जाए।
1: आखिर में हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे?
2: गर्मी से बचें, थोड़ा सा जितना भी हो सकता है, जितना हो सकता है, ये नहीं कि काम बंद कर दें। बाहर का बाजार का खाना कम से कम खाएं, बहुत ही मजबूरी में बाहर का खाना खाएं, घरेलू लिक्विड जरूर लें, मट्ठा हो, कोई मैंगो का जो आजकल जैसे पना बना लेते हैं वो ले लो, बेल पत्थर का जूस ले लो, ORS का पानी ले लो, ये घर से लेके चलें कुछ, और घर से एक बोतल पानी भी लेके चलें इसमें।
1: बिल्कुल डॉक्टर RK शर्मा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है रेडियो के माध्यम से, और हमारे जो सुनने वाले हैं समुदाय के लोग हैं ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे, और जो भी आपने बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: आप सब जानते हैं कि हमारे नाम में ही लोगों की आशा छुपी है, इसलिए हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि होम विजिट के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास होम विजिट में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान मौजूद हो और साथ ही ये होम विजिट फॉर्म भी हो। नमस्ते अम्मा। घर पहुंचने पर सबसे मुस्कुरा कर मिले और वहां के वातावरण को जांच के अनुकूल बनाएं। बच्चे को छूने से पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो लें। घर वालों को भी हाथ धोने का फायदा बताएं। बच्चे की पीलिया की जांच करें और साथ ही आंख, मुंह, नाल और त्वचा की भी जांच करें। बच्चे का तापमान थर्मामीटर से मापें। कहीं बच्चे का तापमान ज्यादा या कम तो नहीं। बच्चे का वजन करें। हर विजिट के दौरान वजन में बढ़ोतरी का हिसाब रखें। माँ को स्तनपान का सही तरीका और फायदे बताएं। 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान कराने की सलाह दें। होम विजिट फॉर्म में लिखे सभी सवालों को माँ और परिवार से पूछें और जानकारी दर्ज करते हुए उचित सलाह दें। बच्चे का स्वास्थ्य अगर गड़बड़ लगे तो उसे तुरंत 102 या फिर 108 बुलाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। आखिरी में अपनी अगली होम विजिट की तारीख परिवार वालों को बताएं। अपना फोन नंबर दंपत्ति से अवश्य साझा करें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने हर होम विजिट को सफल बनाइए, क्योंकि हमारी हर विजिट से फर्क पड़ता है।
1: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा

रेंगकर बाहर निकले, दरवाजा जांचे। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: जन जन का रखें ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जाँच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.